کریم اتنے کریم اتنے کریم، ادھر سر جھکا ادھر راضی ہو گئے اللہ۔

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
1: FM 100's time check. It's 7 a.m.
2: जरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो।
3: अहमद, हटो वहाँ से।
4: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।

0: This public service message is brought to you by FM 100. गाड़ी चलाते वक्त ये ना सोचिए कि सिर्फ आपकी गलतियां हादसात का सबब बन सकती हैं। दूसरों की गलतियों के लिए भी तैयार रहिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए।
1: facebook.com/fm247365
2: Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
3: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: जरा बहन जरा बात तो सुनो, हटो पीछे भागो।
1: अहमद हटो वहाँ से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: अगली गाड़ी से रास्ता लेने के लिए दिन में हॉर्न और रात में बत्तियों का इस्तेमाल कीजिए और रास्ता मिलने का इंतजार कीजिए।
2: दिस मैसेज वॉज ब्रॉट टू यू बाई FM 100 पाकिस्तान।
3: Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: अजरा बहन जरा बात तो सुनो, हटो पीछे भागो।
1: अहमद हटो वहाँ से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: FM 100 ट्रैफिक अपडेट।
4: साथ मैं हूं परों के साथ शहर कराची की सड़कों और चाराहों पर इस पर ट्रैफिक की सूरत हाल कुछ इस तरह है। वो तमाम ट्रैफिक जो इस वक्त मंजिल गंज से फैदाबाद और फैदाबाद से मजीद सिटी एयरपोर्ट की जाने पा रहा है, उसके दरमियान रास्ते पर ट्रैफिक का दबाव इस वक्त ज्यादा है और मजीद हार्ट और एयरपोर्ट के दरमियान ट्रैफिक स्लो मूव कर रहा है। लिहाजा वो तमाम लोग जो इस रास्ते पर सफर करने का इरादा रखते हैं ट्रैफिक की सूरत हाल से आगा रहे हैं ताकि हर वक्त अपनी मंजिलों पर पहुंच सकें। मजीद अपडेट रहने के लिए सुनते रहिए।
3: This traffic update was brought to you by FM 100.

0: अजरा बहन, जरा बात तो सुनो।
1: हटो पीछे, भागो। अहमद, हटो वहाँ से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।

0: FM 100's time check. It's 8 a.m.
1: जरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो।
2: अहमद, हटो वहां से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबिंग सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और श्वाब जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
5: सर सब नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिंसों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 0300-0300-641 पर भेजें या सर सब पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनामात जीतने का। एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें। मजीद मालूमात के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें। तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा।
6: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन व्हिच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
7: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
8: आज सुबह किसी का व्हाट्सएप और किसी का बैंक अकाउंट हैक हो गया और कहीं एक बिजनेस साइबर अटैक का शिकार बन गया। साइबर अटैक सिर्फ सिस्टम्स को नहीं, जिंदगियों को भी टारगेट करते हैं। इसीलिए इग्नाइट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम ब्रिंग्स यू द 5th डिजिटल पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन। हैंड्स ऑन वर्कशॉप्स, रेड एंड ब्लू टीमिंग कॉम्पिटिशन्स। अगर आप स्टूडेंट हैं, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल या एथिकल हैकर, पाकिस्तान के अगले साइबर डिफेंडर बनिए। रजिस्टर नाउ एट cyberhackathon.pk।
9: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
10: शौकत खानम, कराची की तकदीर।
11: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
12: पाकिस्तान इज बिल्डिंग अ सेफर स्मार्टर डिजिटल इकोसिस्टम एंड वी नीड योर टैलेंट। Step up, build a cyber safe life and unlock premier careers in cyber security at the 5th Digital Pakistan Cyber Security Hackathon. Organized by Ignite under the Ministry of IT and Telecom, join hands-on training workshops in 16 cities and secure your future. Registrations are open now at cyberhackathon.pk.
13: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला। मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला, जैज 5G।
0: This program is brought to you by
10: Shaukat Khanam, Karachi ki takleef
5: and Sir Sabz Nitro Force ko laga aur jeet taaja.
14: Bain al-aqwami safar par rawana hone wale mutawajjo hoon. Aisi online apps aur platforms se ijtinab kare jo paison ki ivaz kisi namaloom shakhs ka saman aapke apne saman ke sath le jane ke liye tarkeeb dete hain. Ye aasan kamai ka tareeka to nazar aata hai lekin haqeeqat mein khatarnak jaal hai. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
15: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
16: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
17: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
18: ہماری ذمہ داری ہے.
19: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
20: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
21: Like us on facebook.com/FM247365.
22: FM247365.
23: FM100.
24: 31 سال FM100. آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
25: السلام علیکم پاکستان.

अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वेरी वेरी वेरी वेरी वार्म वेलकम टू गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट अजय समीहा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? वीकेंड आपका कैसा गुजरा? और होपफुली मंडे मॉर्निंग को आप खुशबाश एक्साइटेड होंगे। कुछ लोग बड़े एक्साइटेड होते हैं, कुछ लोग कहते हैं मंडे क्यों आया वगैरह वगैरह। लेकिन अपनी हर सुबह का आगाज करें अल्लाह ताला के जिक्र से, अल्लाह ताला के बहुत ज्यादा शुक्र से, क्योंकि आपने अल्लाह ने आपको एक और दिन दिया है कमाल करने के लिए, काम पे जाने के लिए। और हम अपने शो का आगाज करते हैं कुरान शरीफ के तर्जुमे के साथ, और हम पढ़ रहे हैं सूरह अनकबूत का तर्जुमा। आगे पढ़ते हैं आउज़ु बिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या लोगों ने यह समझ रखा है कि उन्हें सिर्फ इतनी बात पे छोड़ दिया जाएगा कि वो कहते हैं हम ईमान लाए और उन्हें आजमाया नहीं जाएगा, और बेशक हमने उनसे पहले लोगों को आजमाया, तो जरूर जरूर अल्लाह उन्हें देखेगा जो सच्चे हैं और जरूर जरूर झूठों को भी देखेगा। और आप सुन रहे थे सूरह अनकबूत का तर्जुमा। जब भी कुरान शरीफ पढ़ें तर्जुमे के साथ पढ़ें, और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कुरान में कि सिर्फ इतनी सी बात पर कि जी हम ईमान ले आए जो है वो बात नहीं बनेगी, आजमाइश हर इंसान की है, और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे के हम सही रास्ते पे चलें। और राइट, और बच्चे जो है बच्चा पार्टी वाले मेरे जो है पक्के दोस्त वाला टाइम है, तो कैसी है बच्चा पार्टी? और हम पक्के दोस्त का सॉन्ग हम उनको डेडिकेट जरूर जरूर करेंगे। और मगर अभी वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।

0: It's 8:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तना जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.

कैसे हैं आप लोग? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मुर्गी के चूजे सूरज मक्खन लड्डू और मुझ में क्या चीज कॉमन है? बिल्कुल सही, हम सब एक ही रंग के हैं, पीला। और मेरा फेवरेट कलर है पीला।

जी आप सुन रहे थे पक्के दोस्त का ये गाना, और पक्के दोस्त का ही मेरा फेवरेट गाना है पीला पीला सॉन्ग। और फातिमा भी हमें सुन रही है, हेलो फातिमा उमर। और अगर आप भी चाहें अपने बच्चों के नाम हमारे पक्के दोस्त के अंदर ऐड करवा सकते हैं। तो ये पीला सॉन्ग मुझे इतना पसंद है कि मैंने अपनी बहन की माइयों के अंदर भी यही सॉन्ग पीला, क्योंकि एवरीबडी वॉज वेयरिंग येल्लो। एंड देन माई जो जीजू जस्ट एक्नॉलेज, उन्होंने कहा कि ये हमारे साथ नहीं है, और मैं ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। खैर बस पसंद अपनी अपनी है। आज का हम आपको टॉपिक बता देते हैं, आज का टॉपिक हमारा ये है कि क्या आपको लोगों की पहचान है सही, या आपने कभी किसी को पहचानने में गलती की है कि यार इसको तो मैं क्या क्या समझता था और मतलब ये क्या निकला। अक्सर हमें नौकरी करने के बाद पता चलता है कि आप किन लोग, आप शुरू में सब अच्छे लगते हैं जब भी आप वो जो जगह ज्वाइन करते हैं, बाद में कहते हैं यार ये कहाँ आ गए हम, ये होता है कि यार कहाँ आ गए हम हैं, कहाँ फंस गए हैं। बहुत बाद में पता चलता है रिश्तों का, चीजों का, कभी कभी अच्छे खासे लोग चलते चलते बदल जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं ना कि पहले किसी के साथ सफर करो, उसको जानो परखो, सफर में पता चलता है इंसान की असलियत क्या है। अच्छा, और उस्मान हफीज, हेलो उस्मान हफीज, क्या हाल चाल है, ऑफिस की तरफ आप रवा दवा है। ऑलराइट, तो खैर आप लोग मुझे मैसेज करें और बताएं कि आपका क्या सीन है। आपकी पहली बात है कि सुबह कैसी जा रही है, और दूसरा ये कि आप क्या आपसे कभी गलती हुई है किसी को समझने में। आई एम श्योर कि हमसे कहीं ना कहीं तो गलती होती ही है, वरना जिंदगी के अंदर इतने हार्ट ब्रेक्स ना होते। राइट, हमें आप मैसेज करें आजे समीहा के फेसबुक पेज पे या एट आजे समीहा इंस्टाग्राम पे। और एक तरीका और भी है दोस्तों, और वो ये है कि अपने मैसेज बॉक्स में जाएं और टाइप करें, हवा से कर लेती हूँ, कि HI स्पेस आपका नाम, आपका मैसेज उसे भेज देंगे 3636 पर। इंतजार रहेगा आप लोगों के मैसेजेस का। और अभी हम सुनते हैं ये गाना अच्छी की आवाज में।

0: अजरा बहन जरा बात तो सुनो।
1: हटो पीछे, भागो।
2: अहमद हटो वहाँ से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: खालिस अज्जा, भरोसेमंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
5: सर सब नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिंसों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 0300-0300-641 पर भेजें या सर सब पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनामात जीतने का। एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें। मजीद मालूमात के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें। तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा।
6: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
7: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना? अभी JazzCash ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए JazzCash है ना।
8: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशन्स ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111-7837।
9: पाकिस्तान इज बिल्डिंग अ सेफर स्मार्टर डिजिटल इकोसिस्टम एंड वी नीड योर टैलेंट। Step up, build a cyber safe life and unlock premier careers in cyber security at the 5th Digital Pakistan Cyber Security Hackathon. Organized by Ignite under the Ministry of IT and Telecom, join hands-on training workshops in 16 cities and secure your future. Registrations are open now at cyberhackathon.pk.
10: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला। मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला, जैज 5G।
11: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
12: शौकत खानम, कराची की तकदीर।
13: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
14: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस ने जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
15: This program is brought to you by
12: Shaukat Khanam, Karachi ki takleef
5: and Sir Sabz Nitro Force ko laga aur jeet taaja.
16: Like us on facebook.com/FM247365.

वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और आज हम बात कर रहे हैं कि आपको लोगों की पहचान में कभी गलती हुई है. मुझे बड़ी गलतियां हुई हैं और यकीन करें उसका ज्यादा जो है ना वो क्या कहते हैं इंसान को करना पड़ता है जिंदगी में और फिर उसका दूसरे लोगों पे ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है. लेकिन लाइफ इज अबाउट मूविंग ऑन और आगे बढ़ना और जिंदगी से प्यार करना. और जो लोग आपको जिंदगी से नफरत करवा देते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनका साथ आपको जिंदगी से प्यार करवा देता है, कुछ लोगों का साथ ऐसा होता है कि आपको लगता है कि जिंदगी बस इनसे दूर हो. तो आप बताएं कि आपका क्या सीन है, आपको लोगों की पहचान है या नहीं है क्या कहता है. तो ये आप हमें बता रहे हैं, आप लोगों के मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं. अदनान अहमद का मैसेज आया है, कह रहे हैं कि गलती तो हुई है, मकसद लोगों को उनके लहजे से नहीं अपनी सोच से समझते. मैंने भी कभी किसी को खामोश देखकर सोचा नाराज है जबकि वो बस थका हुआ था. लोगों को समझने में सबसे बड़ी गलती ये है कि हम जवाब सुने बगैर कहानी खुद बना लेते हैं. और सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने समझा कि जो चीज मुझे तकलीफ देती है वही दूसरों को भी देती होगी. लेकिन हर इंसान का दिल अलग जबान बोलता है. जब से ये सीखा है फैसला करने से पहले एक बार पूछ लेता हूं. मेरे ख्याल में हम सब गलती कर बैठते हैं. कभी किसी खामोशी को अना समझ लेते हैं, कभी हंसी को खुशी. अच्छा, तो अदनान अहमद आपने किसकी हंसी को खुशी जो है वो समझ लिया. मैं भी ऐसी थी, कोई उदास होना तो उसको लगता था मुझे कि नहीं जी बड़ा बंदा उदास है तो उसको खुश होने की जरूरत है और हम सब चले गए उसका मूड अच्छा करने. वो खुश था, कुछ लोगों का मुंह ही सड़ा हुआ होता है. वो मतलब वो ऐसे ही रहते हैं, परमानेंट एक्सप्रेशन उनका यही होता है कि वो आपको लगता है कि वो उदास है, वो ऐसे ही रहते हैं. मतलब वो आज भी सड़े हुए हैं, वो कल भी सड़े हुए थे, परसों भी सड़े हुए रहेंगे. तो ये उनका एक है सीन. अच्छा जी, और भी लोगों के पैगामात हमारे पास आ रहे हैं और आप लोग हमें क्या कहते हैं बता रहे हैं कि क्या सीन है. आप लोग हमें मैसेज करें आज समिया के फेसबुक पेज पे या एट आज समिया इंस्टाग्राम पे और ये बताएं कि आपको कभी लोगों के पहचानने में आपको गलती हुई है या आपने कहा है कि बस सही है, सब ठीक ठाक है. और तो हमें इंतजार रहेगा आप लोगों के मैसेजेस का. तो अभी हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं ये ट्रैक, आइए सुनते हैं.

जी आप हमारे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में, आप लोगों के मैसेजेस भी हमारे साथ साथ हैं। आज हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि आप लोग को अगर लोगों की कभी पहचान में गलती हुई है, और तो उस्मान कह रहे हैं, और हाँ बाय द वे मुझे किसी के बदलने से डर इसलिए भी नहीं लगता क्योंकि मुझे पता है मैं उसे अपनी तरह कर ही दूंगा और मेरा असर और साथ ही ऐसा होता है, क्या करें। अच्छा क्या बात है, कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा कि मैं उसको अपने साथ ऐसे ही कर लूंगा, क्या बात है उस्मान साहब। अल्लाह आपका कॉन्फिडेंस ऐसे ही कायम रखे। और इकबाल हुसैन साहब का भी मैसेज आ गया है, हैप्पी मंडे, गुड मॉर्निंग आपको भी। और इम्तियाज शाहीन सिटी से मैसेज कर रहे हैं हमें, थैंक यू आपके मैसेज के लिए। और आपने भी अगर हमें अभी सुनना शुरू किया है तो मैं आपको बता दूं कि आज का हमारा टॉपिक यह है कि क्या आपको लोगों को समझने में गलती हुई है। कुछ लोग शुरू में बड़े अच्छे लगते हैं और बाद में आपको उनका असल चेहरा पता चल जाता है, जो बड़ा ही भयानक भी होता है। कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोग आपको अच्छे नहीं लगते शुरू में, लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि नहीं यार, असल में रिलायबल यही लोग हैं। तो खैर वक्त बदलता है, लेकिन इंसान को कोशिश ये करनी चाहिए कि वो बेहतर से बेहतर जज ऑफ कैरेक्टर बने, कि उसे लोगों की परख, लोगों की समझ अच्छे से हो, राइट, ताकि वो जिंदगी भर धोखे ना खाता फिरे। और आप हमें मैसेज करें आरजे समिया के फेसबुक पेज पे या @RJSamia इंस्टाग्राम पे। इंतजार रहेगा आप लोगों के मैसेजेस का। एक और तरीका भी है जहां पे मुझे इम्तियाज साहब ने मैसेज किया है कि अपने मैसेज बॉक्स में जाएं और टाइप करें KHI स्पेस आपका नाम, आपका अजीम और शान पैगाम, और उसको भेज दें 3635। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।

0: It's 8:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul
1: ja. जरा बहन जरा बात तो सुनो, हटो पीछे, भागो।
2: अहमद हटो वहाँ से।
1: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।

0: secure.
1: Join the 5th Digital Pakistan Cybersecurity Hackathon. Hands-on workshops and awareness sessions across 16 cities of Pakistan. Register now at cyberhackathon.pk.
2: An initiative of Ministry of IT and Telecom and Ignite.
3: Shaukat Khanum, Lahore aur Peshawar ke baad, aapki ek aur donation.
4: Shaukat Khanum, Karachi ki takmeer.
5: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanum.org.pk विजिट करें.
6: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: शौकत खानम कराची की तकनीक
7: एंड सरसब्ज नाइट्रो फॉल्स को लगा और जीत ताजा.
8: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी. मजहबी फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी स्पैमिंग धोखा दही बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है. इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं. अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना इस सिलसिले में मदद तलब करना किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें.
9: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया. बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है. अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं. इंटरनेट के जरिए खेलों तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसान जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं. वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं. वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है. बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है. पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें. www.pta.gov.pk. मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
10: पाकिस्तान हमसे है, हम अच्छे तो पाकिस्तान अच्छा. तो आओ अहद करें कि जैसा पाकिस्तान हम देखना चाहते हैं वैसे खुद बनकर दिखाएंगे, क्योंकि हम बदलेंगे तो बदलेगा पाकिस्तान. अजमे इस्तेहकाम मुस्तहकम पाकिस्तान.
9: मुफाद आमा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
11: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है.
12: सामने आप ना कुछ तीन बार मौत देखे
13: टाइम सी मनु ऐसे ही के मैं हूं कब्र से चला गया मैं नहीं बचा.
14: फिर उन्होंने साड़ी वीडियो बनाया सानू मारिया सानू कुटिया.
11: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें.
15: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था वर्क वीजा.
11: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देबाब के लिए वजीर आजम पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का क्याम. मुलगीर क्रैकडाउन जारी. एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमित किए जा रहे हैं. अंदरूनों बैरून मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें. मकामात मुकदसा की ज्यारत को जाने वाले जायरीन भी कानूनी जराए इख्तियार करें. इंसानी स्मगलरों के चुंगल से बचें. ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुनें. हुकूमत पाकिस्तान.
9: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
6: FM 100 like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.
16: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत.
0: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे न लगाएं।
16: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
17: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
0: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
16: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम नहीं।
17: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
0: सिर्फ बातें बनाने से हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते।
17: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
16: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें
0: और इस वजन की असल हकीकत को समझें।
16: आइए वेट से आगे का सोचें।
9: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: जी आप गाना सुन रहे थे वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट, और मतलब मेरी तो पहचान के ये दो तरह के लोग हैं दुनिया में, एक जो डांस करना पसंद करते हैं और एक जो नहीं पसंद करते डांस करना। तो ज्यादा मैं उन लोगों को भी नहीं पसंद करती जो जिन लोगों को म्यूजिक या डांस वांस नहीं पसंद होता। नहीं, अपनी नहीं चॉइस है ये वो, लेकिन ठीक है आपको डांस करना नहीं आता या नहीं पसंद तो मसला नहीं है, लेकिन उन लोगों को तो बुरा भला ना बोले जो खुश रहना चाहते हैं अपने खर्चे पे। राइट, हमें आप मैसेज करें आजय समिया के फेसबुक पेज पे, आजय समिया के इंस्टाग्राम पे। आपने हमें ये बताना है कि आपको लोगों की पहचान में कभी गलती हुई है। तो हम मिलेंगे आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
1: FM 100's time check. It's 9 a.m.
2: जरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो।
3: अहमद, हटो वहां से।
4: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
5: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस फन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशा।
6: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशन्स ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
7: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
8: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला। मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला, जैज 5G।
9: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
10: शौकत खानम, कराची की तकदीर।
11: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
12: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
13: शौकत खानम, कराची की तकदीर
14: एंड सर सब्स नाइट्रो फॉल्स को लगा और जीत ताजा।
15: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
16: FM247365.
17: Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
18: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट आजय समीहा. आज हम बात कर रहे हैं कि क्या आपको लोगों की पहचान में गलती हुई है. अब तो खैर लोग पहचान के भी बस अब जरा दामन बचा लेते हैं, ना बचा सकोगे दामन. और लेकिन हमें भी पहचान हो गई हमारे सियासतदानों की कि वो कुछ भी बोले हमें पहले से पता हो, हमने सोच लिया है. और स्पाई ट्रैकर सुन रहे हो ना तुम, ये तुम्हें कट काट के लगाना है, मेरे बॉस को भेजना तुमने ये वाला पार्ट. हाँ ये वाला पार्ट. हाँ तो कि वो कुछ भी बोल रहे हैं पता है कि झूठे हैं. अब उस चक्कर में अब वाकई में मुझे तो उम्मीद ही नहीं है किसी से भी कि ये हमने सीखा है कि आप सियासतदानों से कोई उम्मीद नहीं रख सकते और कि उन्होंने आपके मसले हल करने, आपने खुद ही अपने मसले हल करने. अगर बिजली लोड शेडिंग का मसला है तो आप सोलर लगाएं, और इसके अलावा अगर गैस का मसला है तो आप सिलेंडर खरीदें, पानी का मसला है तो आप बोरिंग करें या टैंकर वालों के ऊपर पैसे फेंकें तो वो आपके घर पानी आएगा. तो अब गवर्नमेंट से आप एक्सपेक्ट करें कि वो आपको ये तीनों चीजें देगी. तो ये एक धोखा है. तो ये आप अपने आप को ना दें, आपने खुद ही सब कुछ करना है. और ये और फिर अगर आप गरीब हैं तो फिर आप हैं ही क्यों पाकिस्तान के अंदर. मतलब आप जीना फिर आपका यही है, धक्के खा के जीना है हमें. क्योंकि कोई भी आपकी मदद के लिए कोई कोशा नहीं है, कोई आपकी जिंदगी बेहतर के लिए कोशा नहीं है. ये सिर्फ अपने लिए ही कोशा है सियासतदान, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी इतना पैसा है, इनको पैसों की परवाह ही नहीं है. और ये उनकी ज़मीनें हैं, उनकी फैक्ट्री इंडस्ट्री, उनके पास वो पैसा आ रहा होता है. आपको क्या लगता है तनख्वाह जो उनको मिलती है उससे घर चलता है? नहीं. लेकिन मजीद और पैसा और मजीद अपनी PR बनाने के लिए ये लोग सियासत में आते हैं, और फिर हुकूमत के खर्चे पे घूमने के लिए, इंटरनेशनल ट्रिप्स के लिए. मुल्क की खिदमत किन से एक्सपेक्ट करना एक बड़ी बेवकूफ़ी है. इसलिए जो है ना हमें अपने आप को खुद ही मजबूत बनाना है और खुद ही आगे जाना है. और मैंने आपको पेट्रोल की कीमत बतानी है जो आज 342 है. अच्छा ये वो गरीब अपनी मर्जी से पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही होती हैं, अपनी मर्जी से गिर रही होती हैं, ज्यादा बढ़ती हैं कम गिरती हैं. और तो खैर तो ये हमने अपने पहचान लिया. अब मेरे ख्याल से पाकिस्तानी आवाम बहुत समझदार हो गई है, उसने पहचान लिया कि इसने इधर कुछ नहीं होना, हमने सिर्फ अपनी मेहनत करनी है और जैसे ही मौका मिले निकल जाना है इस मुल्क से. लोगों की ये भी सोच है कि बस अब जैसे ही मौका मिले चले जाओ, क्योंकि ये मुल्क सिर्फ सियासतदानों और पावरफुल लोगों के लिए ही रह गया है. आम इंसान का रहना जीना ये थोड़ा सा एक मुश्किल काम है. तो खैर राइट. तो अब आप लोगों के मैसेजेस भी हैं, आप लोग भी मुझे बता रहे हैं कि धोखे हमने खाए हैं तो फिर कैसे हम सरवाइव कर रहे हैं. एनजीक का भी मैसेज आ रहा है हमारे पास. एनजीक कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, हम अकल फिर भी नहीं आई धोखे खाने के बावजूद, जो है वो अकल नहीं आ रही है. कोई बात नहीं, आ जाएगी. कुछ लोग ऐसे जो है ना वो बस खुद ब खुद नहीं कहाँ अकल आई और क्या कहें, दिल तो पागल है. चले कोई बात नहीं, अच्छी बात है आपके अंदर जज्बा है कि धोखे खाने के लिए भी एक टेम्परमेंट और जज्बात चाहिए होता है. इसके अलावा इकबाल हुसैन कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम समिया जी, इंसान गलतियों से सीखता है, ज्यादातर इंसान दो चेहरों से जीते हैं, जो नजर आते हैं होते नहीं. मैंने भी लोगों को समझने में गलती की मगर रुका नहीं, आगे बढ़ा. कुरान में अल्लाह अपने महबूब से फरमाता है कि लोग जो आपके आसपास है इनमें से अक्सर ईमान नहीं रखते, आप नहीं जानते, हम जानते हैं, क्योंकि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह जानता है. बिल्कुल सही बात है. और अल्लाह ताला ही हमें बचाता है. धोखेबाज तो आपकी कभी कभी अपनी फैमिली में होते हैं. हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम किस्सा के मतलब उनके भाइयों ने उनको धोखा दिया था. तो ऐसा नहीं है कि धोखा खाने से कोई भी मुबर्रा है, हर जगह धोखे हैं. और धोखा खा के फिर सब्र करना, फिर आगे बढ़ना, आई थिंक यही जिंदगी है. और इसके अलावा हमारे पास मैसेज आया हुआ था. आबिद मीर साहब कह रहे थे कि राणा इमरान राजपूत साहब अस्सलाम वालेकुम समिया, आप भी समझने में गलती हुई लोगों को, जब भी तो होटल से दोबारा नौकरी की तरफ आ गए हैं, यानी अपना होटल कर लिया था. आप क्या कहते हैं समिया, उसमें किस्मत जो भी खेले लक होता है. हाँ मुझे बड़ा शौक है कि बंदे की ना अपना एक जाती चाय का ढाबा तो होना ही चाहिए, क्योंकि चाय का बिजनेस बहुत ही अच्छा है कराची के अंदर स्पेशली. यहाँ लोग कुछ खाएं या ना खाएं चाय जरूर पीते. चाय पराठा पे जिंदा है आधा कराची, और रात गए तक वो बिजनेस चलता रहता है. 3-3 बजे तक यहाँ लोग बैठे रहते हैं. कराची के आवाम अपनी सेहत खराब कर रहे होते हैं रातों को जाग जाग के, और बस बैठे रहते हैं वहां पे. चाय चल रही है, सिगरेट चल रही है, रंग काले हो रहे हैं उनके, और मोबाइल फोन पे लगे हुए हैं. कोई सेहत नहीं, कोई रौनक नहीं, कोई खुशी नहीं, कोई खूबसूरती नहीं. बस ये हैं कराची के लड़के ज्यादातर आजकल बैठे हुए वहां पे, सेहत है उनकी खराब, और बस चल रहे हैं गम भुलाने के लिए. जो है ना वो शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं. इतनी मेहनत वो काम करने में लगा देते तो लाइफ बेटर होती, जिम जाने में लगा देते, मगर वो शॉर्टकट ढूंढने में लगा रहे होते हैं.
چائے پی رہے ہیں, بس یہ لائف ہے. تو چائے کا ڈھابا آئی ڈونٹ نو کیوں نہیں چلا, کوئی بات نہیں, ہوتا ہے, بزنسز چلتے ہیں اور فیل ہو جاتے ہیں, مسئلہ نہیں ہے, لیکن بندہ ہمت نہ ہارے آگے بڑھتے رہے. دیکھیں دو ہی طرح کے لوگ ہیں دنیا میں, ایک جو اپنی ناکامیوں سے بس ہمت ہار جاتے ہیں اور وہیں بیٹھ جاتے ہیں, اور دوسرے ہوتے ہیں یار کوئی بات نہیں یار لیٹس موو آن, یہ غلطی کی اس بات نیکسٹ ٹائم نہیں کریں گے اور آگے بڑھیں گے. تو آئی تھنک سیکنڈ والا ایٹیٹیوڈ صحیح ہے. اوکے, اور آپ لوگ مجھے میسج کر رہے ہیں آر جے سمیہ کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آر جے سمیہ انسٹاگرام پہ, اور اگر ابھی تک آپ نے میرا پیج فالو نہیں کیا تو کر لیں یار, لائف از ٹو شارٹ. آر جے سمیہ, سمیہ نام ہے میرا, SAMEEHA, اور ابھی ہمارے

गया है, और वो मुझे सलमान का गाना नहीं मिला, वैसे अच्छा गाना था, आपको आप खुद ही मुझे गा के सुना दे आबिद अमीर तो वो फिर क्या कहते हैं, मैं आपको, मुझे उल्फत आज सुनना, कुछ और गाना था लेकिन खैर वो भी नहीं मिला मुझे, तो उल्फत मुझे कितना अच्छा लगता है। आजकल कोई उल्फत नहीं इस्तेमाल करता ना लफ्ज, कि मुझे तुमसे उल्फत है, तुमसे उल्फत है, कौन इस्तेमाल करते है उल्फत है, चलिए पुराने गानों में ही सुन लेते हैं, तो आइए सुनते हैं।

0: आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और होपफुली आपकी मॉर्निंग अच्छी जा रही होगी हमारे साथ। होपफुली आपका अच्छा मूड होगा, मुस्कुरा रहे होंगे, आपने अच्छा परफ्यूम लगा लिया होगा। और परफ्यूम लगाना या खुशबू आना आपके पास से बहुत ज्यादा जरूरी है। कराची के लोग, कराची क्या मतलब ज्यादातर लोग पाकिस्तान के अंदर इतना ज्यादा कॉन्शियस नहीं है कि हाउ दे स्मेल। और सुबह सुबह चाहे तो अच्छी खुशबू लगा के जाएं, क्योंकि ज्यादातर यहाँ डिओड्रेंट ही लोग इस्तेमाल नहीं करते। और यकीन करें, अच्छी अच्छी जगहों मैंने देखा है कि लोगों को इस बात का सेंस ही नहीं है कि दे डोंट स्मेल गुड। शुरू ये भी एक धोखा है, आपको देखने में लोग बड़े अच्छे लगेंगे और मगर लिफ्ट के अंदर आप कभी कभी सांस नहीं आती है। मैं तो कहती हूँ लोगों को कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देनी चाहिए अपने एम्प्लॉयज को इस बात की, खुदा के लिए ऑफिस डिओड्रेंट लगाकर आए और धुले कपड़े पहनकर आए। और ये जरूरी नहीं है, अगर आप नहाकर भी आए हुए हैं और अगर आपने वही पुराने कपड़े पहने हुए बगैर धुले हुए, तो ये मतलब फिर क्या कहते हैं, दूसरों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। और ये ऐसी बातें कोई नहीं बताता किसी को, मैंने आई डोंट थिंक मेरे अंदर भी हिम्मत है कि मैंने किसी कोलीग को ये बताया हो कि खुदा के लिए नहाकर आया करो। या हालांकि मैं काफी मतलब बोल देती हूँ बातें, लेकिन अभी तक हिम्मत नहीं हुई कि बता दूं कि भाई खुदा के लिए नहाकर आया करे, भाई कभी ये रोल ऑन लगा ले हैं। तो ये मतलब क्या सांस नहीं आ रही तुम्हारे पास, तुम्हारे पास खड़े होकर ना सांस को सांस नहीं आती, लेकिन ये हम नहीं बोल पाते। भले हम कितने मुंह फट सही, लेकिन हम ये बातें नहीं बोल पाते। इवन शादी के बाद लोग दूसरे को नहीं बता पाते खुदा के लिए, क्योंकि वो सोचते हैं कि यार इसको अभी तक नहीं पता। और हर इंसान को लगता है कि उसके पास से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ऐसा नहीं है। किसी के पास से नेचुरली अच्छी खुशबू नहीं आती। हम जन्नत से डायरेक्ट यहाँ ड्रॉप नहीं हुए। और तो मतलब लिटरली मतलब हम इंसान हैं, तो हमें अच्छा खुशबूदार होने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मतलब हमें नहाना पड़ता है अच्छा, और मतलब यू नो बॉडी स्प्रे, रोल ऑन डिओड्रेंट और फिर परफ्यूम, ये सारी चीजें लगानी पड़ती हैं, तब कहीं जाके हमारे पास से अच्छी खुशबू आती है। तो अगर आपको लगता है कि अगर आप एक ही शर्ट दो या तीन दिन पहन रहे हैं और लोग इस बात को नोटिस नहीं कर रहे, लोग नोटिस कर रहे हैं। प्लीज चेंज योर क्लोथ्स। और एक दिन बहुत है कराची के माहौल के लिए, कराची के एडवेंचर के लिए, कि आप एक दिन एक आपके लिए भरे हो, आपके पास पांच शर्ट्स हो या पांच जोड़े हो, आप रोजाना चेंज करके स्पेशली ऑफिस जाएं, वही जोड़े पहन के खुदा के लिए ऑफिस नहीं जाएं। लोग खुद ही नहीं आएंगे आपके पास, बोलेंगे हाय हाय इसने तो ये शर्ट परसों भी पहनी हुई थी, मतलब ये तीन दिन से। ये मैं लिटरली आई डिडंट यूज्ड टू टॉक टू पीपल, क्योंकि मैं मीडिया से मेरा ताल्लुक है और मीडिया के अंदर अक्सर लोग अपना खासतौर पर जो बिहाइंड द सीन्स काम करते हैं लोग, उनको इस बात का एहसास नहीं होता कि लड़कियां देख रही होती हैं, लड़कियां चीजों को बड़ा नोटिस करती हैं। लड़के भले नोटिस ना करें दूसरे की शर्ट, कि लड़कियां करती हैं और कहती हैं यार ये वही मैं लिटरली मैं बात नहीं करती थी कि मुझे उसका रंग याद था कि यार तीन दिन से यही ऑरेंज टी शर्ट पहनकर आ रहा है। और देन यू नो आई वॉज लाइक नहीं यार मैं ऐसे बात ही नहीं करी, आई डोंट नो वॉट टू एक्सपेक्ट। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप जो है ना अपनी क्या कहते हैं, लड़का हो या लड़कियां, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के ही हैं। लड़कियों प्लीज अपने जो अबाए हैं या जो भी आप पहनती हैं खुदा के लिए इनको धोया भी करें। और तो ये नहीं है कि अबाए हैं तो हमें धोने की जरूरत नहीं है। तो प्लीज आप जब भी बाहर जाएं कोशिश ये करें कि साफ सुथरे कपड़े और ऐसे कपड़े पहने कि जिनसे अच्छी खुशबू आए। बल्कि मैं तो कह रही हूँ कपड़ों को पहले कपड़ों को रख के उन पर खुशबू डालें, उसके बाद पहन के लगाएं। आप जितना परफ्यूम लगा लें, डिओड्रेंट, बॉडी स्प्रे, लोरॉन, जो भी आप खुशबू के लिए इस्तेमाल करते हैं, कम है कराची जैसे एनवायरमेंट में। तो ये पब्लिक सर्विस मैसेज हमारी खास दोस्त ने मुझे कहा था कि जरूर जरूर लोगों को बता दें, तो मैंने बता दिया। आई होप कि लोग इस बात का ख्याल रखें, कराची के अंदर इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्मेल गुड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इट रिक्वायर्स हार्ड वर्क, मेहनत लगती है अच्छा खुशबूदार इंसान बनने के लिए। नेचुरल कोई चीज नहीं है, राइट? और आप लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या आपने कभी किसी को पहचानने में गलती की है कि नहीं की। तो हमें इंतजार रहेगा आप लोगों के मैसेजेस का। और नसीम पटेल जी, कैसी हैं आप? नसीम पटेल जी ठीक ठाक हैं। मैं ऐसा गाना लगा रही हूँ जो आई एम श्योर के सबको पसंद आएगा और नसीम पटेल जी को भी पसंद आएगा। आइए सुनते हैं।
1: जिंदगी और मौत का सवाल बार बार मेरे जहन में गर्दिश करता है। क्या किस्मत की तमाम ठोकरें सिर्फ मेरे लिए ही बनाई गई हैं? क्या किस्मत के तमाम चक्रों की गर्दिश खत्म कर देना ही जोहर

0: It's 9:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul
1: ja. Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
4: शौकत खानम, कराची की तकदीर।
5: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: शौकत खानम, कराची की तकदीर
6: एंड सरसब्ज नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा।
7: खवातीनो हजरात, मंशियात वो जहर कातिल है जिसकी संजीदगी का एहसास इंसान को तब होता है जबकि जहर हमारी रगों में साइद कर चुका होता है। वक्ती सुरूर और मजे का लिबादा ओढ़े ये लानत गैर महसूस तरीके से हमारी नौजवान नस्ल को अपने शिकंजे में ले रही है। मंशियात की लानत में गिरफ्तार होने की एक बड़ी वजह बुरी सोहबत है जिसको अमूमी तौर पर हम नजरअंदाज कर देते हैं जबकि दरअसल इस अमल का ताना बाना बुरी सोबत और मेल जोल से जाके जुड़ता है। घर देर से लौटना, वालदेन और घर वालों से नजरें चुराना, खानदान और अहबाब की महफिलों से गुरेज करना, गैर मामूली अखराजात में इजाफा, ये सब इसकी बड़ी अलामत है। खुदा रा अपने बच्चों पर नजरें रखें ताकि वो ताहयात आपकी नजरों के सामने रह सके। हमारा आज़्म एक कौम, एक मंजिल और मंशियात से पाक पाकिस्तान।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
8: FM 247365

0: 15 AM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
2: FM 100 Like us on facebook.com/fm247365
3: FM 247365। कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है। आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन सब

0: अजरा बहन जरा बात तो सुनो।
1: हटो पीछे, भागो।
2: अहमद हटो वहाँ से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: माहराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबिंग सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागात से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉब जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
5: FM 247-365

0: 45 AM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga
1: aur bhul ja. तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जरायम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें। गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें। लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: क्या आप जानते हैं कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स की जानिब से मुख्तलिफ वैल्यू एडेड सर्विसेज फराहम की जाती हैं? इन सर्विसेज में रिंगटोन्स, ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स, मिस्ड कॉल अलर्ट, इंटरनेट बंडल्स, गेम्स और दीगर मालूमाती सहूलियात शामिल हो सकती हैं। ताहम बाज़ औकात ये मुशाहिदा सामने आया है कि सारिफ की इजाजत के बगैर कोई वैल्यू एडेड सर्विस फाल हो जाती है या बैलेंस से रकम कट जाती है, जबकि सारिफ को इसका इल्म भी नहीं होता। याद रखें कि वैल्यू एडेड सर्विस की फालियत के लिए सारिफ की तस्दीक जरूरी होती है, जिसके लिए अमूमन ओटीपी की तस्दीक या मखसूस यूएसएसडी को डायल करना लाजिम होता है। याद रखें, पीटीए टेलीकॉम ऑपरेटर्स को वैल्यू एडेड सर्विस खुदकार तौर पर एक्टिवेट करने की इजाजत नहीं देता। अगर आपने ना तो ओटीपी शेयर किया है और ना ही कोई कोड डायल किया है तो ऐसी सर्विस फाल नहीं होनी चाहिए। अगर आपके साथ भी ऐसी सूरत हाल पेश आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं। सबसे पहले अपने मुतल्लिका टेलीकॉम ऑपरेटर से राब्ता करें और बाकायदा शिकायत दर्ज करवाएं। ऑपरेटर आपको एक शिकायत नंबर फराहम करेगा। अगर मुकर्रा वक्त के अंदर आपका मसला हल ना हो तो आप पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के ऑनलाइन पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत के अंदराज का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले वेबसाइट complaint.pta.gov.pk पर जाएं। शिकायत के अंदराज के लिए सारिफ को अपने नाम और शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए एक यूजर प्रोफाइल बनाना होगा। इसके बाद साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करें और मतलूबा मालूमात फराहम करें, जिनमें नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, राबता नंबर, शहर का नाम और पासवर्ड शामिल होंगे। इसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें और मौसूल होने वाला वन टाइम पासवर्ड दर्ज करें। अकाउंट बनने के बाद साइन इन करें और अपना CNIC और पासवर्ड दर्ज करके लॉग इन हो जाएं। याद रखें कि आपका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर ही आपका यूजर नेम होगा। लॉग इन होने के बाद बाएं जानिब मौजूद रजिस्टर न्यू कंप्लेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब शिकायत की तफसीलात दर्ज करें और शिकायत की नौयत मुंतखब करें। इसके बाद शहर, सर्विस, फराहम कुनंदा की किस्म और दीगर मतलूबा मालूमात फराहम करें। अगर आपकी शिकायत किसी मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर से मुतालिक है तो इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके पास वो शिकायत नंबर मौजूद हो जो आपको ऑपरेटर के पास शिकायत दर्ज कराते वक्त फराहम किया गया था, क्योंकि पीटीए के पास शिकायत के इंदराज के लिए ये नंबर देना जरूरी होता है। अब कंप्लेंट नंबर दर्ज करें और कंप्लेंट समरी में अपनी शिकायत की तफसील लिखें। जरूरत के तहत मुतल्लिका फाइल भी मुंसलिक की जा सकती है। इसके बाद कवायद और जवाबित कबूल करते हुए अपनी शिकायत बाकायदा तौर पर सबमिट कर दें। शिकायत सबमिट होने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मौसूल होगा, जिसके जरिए आप अपनी शिकायत का स्टेटस भी मालूम कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए पीटीए के टोल फ्री नंबर 0800 55055 पर राब्ता करें। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, पीटीए।
4: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
5: FM 24/7/365

0: Your location for maximum music. FM 100's time check. It's 11 a.m.
1: जरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो।
2: अहमद, हटो वहाँ से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस ने जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
5: कहीं अनजाने में आप दहशत गर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशत गर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशत गर्दों की माली मुआवनत भी दहशत गर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान।
6: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
0: लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365.
7: Let's
0: celebrate 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
7: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मुहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
3: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365.

0: अजरा बहन जरा बात तो सुनो,
1: हटो पीछे, भागो।
2: अहमद हटो वहाँ से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
5: FM247365

Время шоу.

100 पाकिस्तान। हाउ आर यू ऑल, क्या हाल है आप सबके, कैसे गुजर रहा है दिन, क्या कर लिया है, क्या करने वाले हैं। तो होंगी आपसे खूब सारी बातें, शेयर करेंगे कुछ इन्फॉर्मेशन और साथ ही साथ प्रोग्राम में होगा बहुत सारा म्यूजिक। तो चलें जी, सबसे पहले प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का बाकायदगी से आगाज करते हैं, फिर आपसे खूब सारी बातें करते हैं। और आज आपको याद होगा कि सैटरडे वाले दिन हमने कहा था कि आज के शो में कुछ स्पेशल करेंगे, तो वो क्या था उस पर भी होगी बात। तो चलें जी, सबसे पहले करते हैं प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का बाकायदगी से आगाज।

Yes, everybody, तो हो चुका है प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का बाकायदगी से आगाज. जी तो प्रोग्राम का बाकायदगी से आगाज आप जानते हैं कि जी एक अदद म्यूजिकल ट्रैक के साथ होता है और वो रिवायत हो गई है कायम. लेकिन आज भाई कुछ इंटरेस्टिंग ये होगा, शायद आपको याद हो सैटरडे वाले दिन, कि सैटरडे वाले दिन हमने कहा था कि भाई हम ऐसा करेंगे कि मंडे वाले दिन ना आपकी पसंद के ट्रैक्स को शामिल करेंगे, यानी कि मंडे को सॉर्ट ऑफ हम रिक्वेस्ट शो करेंगे, यानी कि प्लेलिस्ट हमारी नहीं होगी आपकी. लंच टाइम स्पेशल में आज प्लेलिस्ट मेरी नहीं आपकी होगी. आप बताएं क्या सुनना है, किसके नाम डेडिकेट करना है और हम कोशिश करेंगे कि आपकी रिक्वेस्ट आप तक जरूर पहुंचाएं. तो आज के शो को हमने जरा सा चेंज किया है, लंच टाइम स्पेशल तो रहेगा लेकिन आज आपके पसंद के ट्रैक्स को हम करेंगे शामिल. तो किसकी आवाज सुनना चाहते हैं आप, आतिफ असलम की या फिर अली जफर की या फिर शहजाद रॉय की या फिर अली अजमत की, जिसकी भी आवाज आपको सुननी है आप सिर्फ हमें मैसेज करें 3636 पे या फिर आरजे फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर. दोनों जगह पे हमने स्टेटस अपडेट कर दिया है, यानी कि आप हमें 3636 पे मैसेज करें या फिर आरजे फातिमा खान के फेसबुक पेज पर और हमें बताएं कि भाई कौन सा ट्रैक आप सुनना चाहते हैं. तो हम इंतजार करें भाई आपके मैसेज का कि जो भी ट्रैक आप सुनना चाहते हैं उसकी आप हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं. और साथ ही साथ हमें ये भी बताएं कि छुट्टी का दिन आप सबका कैसा गुजरा, कैसा लग रहा है भाई आज मंडे वाले दिन काम पर आकर. कराची का मौसम तो कोई इतना शानदार चल रहा है ना कि भाई मुझे लग रहा है कि जिंदगी का ही ना मजा आ रहा है आजकल, बिकॉज वेरी वेरी नाइस वेदर इन कराची. और ये अच्छा सा मौसम जो है वो मूड तो अच्छा करता है लेकिन अभी ना वो थोड़ा थोड़ा आपको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे खुनकी भी है और रात में तो भाई अच्छा खासी ठंडा माहौल हो जाता है. यानी कि अब का थोड़ा टाइम ऐसा है वेदर में कि आपको चादर की जरूरत भी पड़ रही है. तो यकीन नहीं आ रहा कि ये शहर कराची में ही हम अपना वक्त गुजार रहे हैं. अगस्त का महीना वैसे अच्छा ही गुजरता है लेकिन इस दफा कुछ ज्यादा ही अच्छा गुजरा है. बारिश तो नहीं हुई लेकिन अच्छे मौसम ने ना उस बारिश की कमी को पूरा कर दिया. तो वाह भाई, अगस्त का महीना बहुत ही शानदार और अच्छा गुजर रहा है और 8 अगस्त का आखिरी दिन भी है. तो मौसम की मजीद तफसीलात क्या हैं ये भी आपसे शेयर करेंगे लेकिन पहले एक ट्रैक एंड देन वी विल बी राइट बैक.

0: जी सुट्रैक के साथ वापस आ चुके हैं हम लोग और गुफ्तगू का सिलसिला आप लोगों से जारी है। मंडे का दिन कैसा जा रहा है आप सबका, छुट्टी का दिन कैसा गुजरा आपका, इसी हवाले से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला आप लोगों के साथ जारी है। लेकिन आज प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल में आपकी पसंद के सॉन्ग चलेंगे, तो भाई कौन सा ट्रैक आप सुनना चाहते हैं हमें जरूर बताएं। 3636 पर मैसेज करें या आरजे फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर मैसेज करके हमें जरूर बताएं। समी शेख कहते हैं अस्सलाम वालेकुम फातिमा, कैसी हो आप? सलाम टू ऑल लिसनर्स। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूं। कहते हैं मुझे मंडे बहुत लेजी डे लगता है और बोरिंग भी। ओके अच्छा भाई, मंडे वैसे थोड़ा लेजी इसलिए हो जाता है क्योंकि आप छुट्टी वाले दिन को खूब एंजॉय कर रहे होते हैं, देर तक जागकर, और फिर अगले दिन आप देर तक सोते हैं। मैं तो भाई कहती हूँ संडे वाले दिन आपको अपनी नींद जरूर पूरी करनी चाहिए। अगर आपको वीक में सिर्फ एक छुट्टी मिलती है ना, तो आप इस छुट्टी को भरपूर एंजॉय करें बहुत ज्यादा सोकर। इट डिपेंड्स ऑन यू। और इसी के साथ साथ भाई इन्होंने हमसे एक ट्रैक की रिक्वेस्ट भी की है कि भाई आप इस ट्रैक को शामिल कर लें, तो डील डन करते हैं भाई, क्योंकि आज तो रिक्वेस्ट शो है, आपकी पसंद के ट्रैक्स को हम शामिल करेंगे। तो बिल्कुल जी, हमें मैसेज करें या फिर आरजे फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर कमेंट करें और बता दें कि भाई आप कौन सा ट्रैक सुनना चाहते हैं। क्योंकि फिलहाल तो हम जा रहे हैं एक अदद ब्रेक की जानिब, आते हैं वापस ब्रेक के बाद ट्रैक के साथ। सो वी विल बी राइट बैक, कहीं मजा आएगा, हम आते हैं वापस ब्रेक के बाद।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले। नशा न परेशानियां खत्म करता है, इसका जरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबता करें।
2: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365 FM 247365

ऑल राइट जी, तो आ चुके हैं हम लोग वापस और भाई समी शेख के बसने के ट्रैक को हमने शामिल कर लिया। उसी के साथ साथ हमारे पास मजीद रिक्वेस्ट भी आ चुकी हैं जिसे हम शामिल करेंगे। बिल्कुल भाई, क्योंकि आज प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल में प्लेलिस्ट आपकी होगी। जी हाँ, क्योंकि आपकी पसंद की म्यूजिक को हम करेंगे शामिल, चलाएंगे हम, लेकिन प्लेलिस्ट आज मेरी नहीं होगी बल्कि मेरे लिसनर्स की होगी। जो भी वो ट्रैक सुनना चाहते हैं वो हमें 3636 पर मैसेज कर सकते हैं या फिर फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर। सो यू लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर मैसेजेस। भाई हमारे पास मोहम्मद अरबाज खान का मैसेज आया था, असलम के ट्रैक की रिक्वेस्ट करते हैं, जरूर भी हमसे रिक्वेस्ट करती हैं। बिल्कुल जी, डील डन है, हम जरूर करेंगे शामिल, क्योंकि भाई आज आप ही के पसंद के ट्रैक्स को हम शामिल कर रहे हैं। बस यू हैव टू वेट फॉर योर टाइम, मतलब थोड़ा थोड़ा एक वन बाय वन करके हम आप लोगों के पसंद के ट्रैक्स को शामिल करेंगे और जरूर करेंगे भाई, बिकॉज आज हमने आपसे प्रॉमिस किया है। अच्छा भाई, बात ये हो रही थी कि आपका छुट्टी का दिन कैसा गुजरा, उसी के साथ साथ समी शेख ने कहा कि भाई उनका मंडे का जो डे है वो अच्छा नहीं होता बिकॉज उन्हें लेजी लगता है, और मंडे का दिन वैसे ऐसे ही होता है, लेकिन मुझे लगता है मंडे का डे जो है ना वो एक मोटिवेशनल डे होता है बिकॉज आपको अपना एक पूरा वीक शुरू करना होता है। एंड आई रियली लाइक द मंडे व्हेन, जब कभी कभी मंडे जो है वो स्टार्ट ऑफ द मंथ होता है, यानी कि लाइक 1 सितंबर को मंडे है, 1 अगस्त को मंडे है, जो भी महीना शुरू हो रहा है अगर उसकी 1st को मंडे, तो आई फेल्ट सो गुड, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि अब महीना बड़ी अकॉर्डिंगली चलेगा, हालांकि इसका कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है मुझे। इस दफा भी ऐसा ही है कि भाई 31 है, यानी कि अगस्त अख्ताम पजीर होने जा रहे हैं आपसे कुछ घंटे बाद, इंशाल्लाह जब हम कल मिलेंगे आपसे तो हम एक नए महीने में दाखिल हो जाएंगे। अगस्त का महीना बहुत अच्छा गुजरा हर लिहाज से, मतलब मौसम के लिहाज से तो मैं कहूंगी कि ट्रेमेंडस, बेहतरीन गुजरा। इस वक्त कराची का दर्जा हरारत 29 है जबकि महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत 30 है, और ये दोपहर का वक्त है शहरे कराची में। सो सिंपली वी कांट बिलीव दिस कि कराची में इतना अच्छा मौसम चल रहा है, दोपहर भी अबर आलूद रही। हाँ, बारिश का एक अफसोस ही रहा, और जब पंजाब के हम ये देख रहे हैं, वीडियोज देख रहे हैं पंजाब में तेज बारिशें हो रही हैं, तो ये जानकर दिल तो बहुत जला, लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं, हम कराची वाले हर हाल में खुश हैं। बारिश का तो वैसे ही हमारे साथ बहुत प्रैंक होता है, तो इसलिए इस दफा हमने बारिश का सोग नहीं मनाया बल्कि हमने एंजॉय किया सच्चे से मौसम को भी, एंड वी आर हैप्पी। तो भाई आज अगस्त का आखिरी दिन भी अच्छे मौसम के साथ गुजर रहा है कराची में, इस महीने को हमने खूब एंजॉय किया बिकॉज ऑफ गुड वेदर। और भाई आज भी अगर किसी की बर्थडे है तो हमारी जानिब से हैप्पी बर्थडे टू यू एंड गॉड ब्लेस यू। एंड उसी के साथ साथ हम चल रहे हैं अपनी नेक्स्ट रिक्वेस्ट की जानिब, जो कि है स्ट्रिंग्स का ये ट्रैक। सो एंजॉय।

0: It's 12:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix
1: laga aur bhul ja. पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बहुत सी औरतों को माली, जिस्मानी, जहनी और जिनसी घरेलू तशद्दुद का सामना करना पड़ रहा है। चाहे आप किसी के शौहर, वालिद, भाई या बेटे हों, अपना स्ट्रेस और फिक्र को अपनी बीवी, बेटी, बहन या वालिदा पर हरगिज ना निकालें। हुकूमत पाकिस्तान ने घरेलू तशद्दुद का निशाना बनने वाली औरतों के लिए खुसूसी हेल्पलाइन 1099 के साथ हेल्पलाइन 1099 ऐप का आगाज किया है, ताकि हमारे इदारे उनकी भरपूर मदद कर सकें। अगर आप या आपके जानने वाले घरेलू तशद्दुद का शिकार हैं, तो फौरी तौर पर हेल्पलाइन 1099 ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें। होम स्क्रीन पर अपना नाम, फोन नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करके साइन अप करें। हंगामी हालात की सूरत में जहां आपकी या किसी की जान खतरे में हो, लाल बटन का इस्तेमाल करें, जिससे मुतल्लिका इदारे आपकी मदद के लिए फौरी हरकत में आ जाएंगे। तफसीली शिकायत के लिए सब्स बटन का इस्तेमाल करें, जिसमें आप तहरीरी शिकायत के साथ वीडियो, तस्वीर और ऑडियो सबूत भी जमा कर सकते हैं। याद रखिए, घरेलू तशद्दुद कानूनन जुर्म है और हम सबको मिलकर इसे रोकना है। तशद्दुद से तहफ्फुज आपका हक है। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
2: 100 FM।
3: हाय फ्रेंड्स, आई एम मिकाल ज़ुल्फ़िकार एंड टुडे आई एम नॉट स्पीकिंग टू यू एज अ पब्लिक फिगर बट एज समवन हु केयर्स अबाउट योर फ्यूचर। We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
0: Ye paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
4: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो, तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: पाकिस्तान में बर्ड से फैकिंग के वाकयात में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। रोजाना आम शहरी, बुजुर्ग, खवातीन, तुलबा और कारोबार से वाबस्ता अफराद अपने बर्ड से अकाउंट से महरूम हो रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको दो अहम बातों पर रहनुमाई फराहम करेंगे। अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो चुका है तो इसे वापस कैसे हासिल किया जा सकता है, और मुस्तकबिल में व्हाट्सएप को दोबारा हैक होने से कैसे महफूज रखा जा सकता है। आइए देखते हैं व्हाट्सएप हैक कैसे होता है। पाकिस्तान में आमतौर पर व्हाट्सएप हैकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके। आपको व्हाट्सएप या किसी जानने वाले के नाम से पैगाम आता है कि आपका अकाउंट वेरीफाई करना है, या ये 6 हिंसों का कोड भेज दें। बाज़ औकात ये पैगाम किसी दोस्त या रिश्तेदार के नंबर से आता है जिसका अकाउंट पहले ही से हैक हो चुका होता है। लोग लाइल्मी या जल्दी में 6 हिंसों का तस्दीकी कोड शेयर कर देते हैं। बस इसी एक गलती से हैकर आपके व्हाट्सएप का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेता है। याद रखें, व्हाट्सएप का तस्दीकी कोड कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता। ना व्हाट्सएप खुद मांगता है, ना कोई अदारा और ना कोई दोस्त। अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो जाए तो फौरन क्या इकदाम उठाने चाहिए? अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो चुका है तो घबराए नहीं, अपने मोबाइल फोन से व्हाट्सएप डिलीट करें और दोबारा इंस्टॉल करें। साथ ही अपने दोस्तों और खानदान को किसी और नंबर से इतला दें कि अगर आपके नाम से कोई मशकूक पैगाम आए तो इस पर हरगिज यकीन न करें। अपना वही मोबाइल नंबर दर्ज करें जो व्हाट्सएप पर रजिस्टर्ड था। व्हाट्सएप आपको SMS या कॉल के जरिए 6 हिंसों का तस्दीकी कोड भेजेगा। ये कोड दर्ज करें। ज्यादातर केसेस में इसी मरहले पर हैकर की रसाई खत्म हो जाती है, क्योंकि व्हाट्सएप एक वक्त में सिर्फ एक डिवाइस को इजाजत देता है। अगर तस्दीकी कोड न आ रहा हो ہو یا پن لگا دیا گیا ہو. اگر ہیکر نے آپ کے اکاؤنٹ پر پوسٹ ویریفیکیشن پن لگا دیا ہے اور آپ لاگ ان نہیں ہو پا رہے, واٹس ایپ آپ کو آپشن دیتا ہے 7 دن بعد دوبارہ کوشش کرے. 7 دن بعد واٹس ایپ آپ کو بغیر پن کے لاگ ان کرنے کی اجازت دیتا ہے, لیکن صرف اسی نمبر پر. اس دوران یہ باتیں لازمی یاد رکھیں: سم کارڈ اپنے پاس اور فال رکھیں, نمبر بند یا سسپینڈ نہ ہونے دیں, واٹس ایپ بار بار انسٹال نہ کریں, ای میل کے بغیر اکاؤنٹ فال. اگر آپ نے ای میل ایڈریس شامل نہیں کیا اور پن بھی یاد نہیں, واٹس ایپ پھر بھی 7 دن بعد آپ کا اکاؤنٹ فال کر دیتا ہے, بشرطیے کہ سم کارڈ آپ کے پاس ہو. سم کارڈ سب سے اہم ہے. اضافی طور پر آپ اپنے نمبر اور مسئلے کی تفصیل کے ساتھ واٹس ایپ سپورٹ کو ای میل بھی کر سکتے ہیں. رابطوں کو فوری اطلاع دیں. اکاؤنٹ بحال ہوتے ہی اپنے تمام رابطوں کو پیغام بھیجیں, میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا تھا, براہ کرم پچھلے کسی بھی پیغام یا درخواست کو نظر انداز کریں. اس سے آپ کے دوست اور خاندان مزید نقصان سے بچ سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں مستقبل میں ہیک ہونے سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے. ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن لازمی فال کریں. سیٹنگز, اکاؤنٹ, ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن, یا ایک 6 ہندسوں کا پن سیٹ کریں جو صرف آپ کو یاد ہو. ای میل ایڈریس ضرور شامل کریں. ای میل شامل کرنے سے پن دوبارہ سیٹ ہو سکتا ہے. اکاؤنٹ تیزی سے فال ہو جاتا ہے, ہیکنگ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. تصدیقی کوڈ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں, چاہے پیغام دوست کا ہو یا کسی ادارے کے نام سے ہو. کوڈ شیئر کرنا سیدھا اکاؤنٹ ہیک ہونے کے برابر ہے. جعلی لنکس اور آفر سے بچیں. مفت انٹرنیٹ انعامات, سرکاری یا بینک کے جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. ایسے لنکس پر کلک نہ کریں. واٹس ایپ لنک ڈیوائسز چیک کریں. سیٹنگز, لنک ڈیوائسز, اگر کوئی نامعلوم ڈیوائس نظر آئے تو فوراً لاگ آؤٹ کریں. فون لاک اور بایو میٹرک استعمال کریں. اگر فون محفوظ نہیں ہوگا تو واٹس ایپ بھی محفوظ نہیں رہے گا. پن, فنگر پرنٹ یا فیس لاک ضرور فالو کریں. یاد رکھیں, واٹس ایپ ہیکنگ کوئی تکنیکی جادو نہیں بلکہ زیادہ تر انسانی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے. تھوڑی سی آگاہی اور احتیاط سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں, اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں.
2: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
6: FM 24/7/365

Yes, my friend. So I am back. बिल्कुल मैं आपके साथ मौजूद हूँ 12 से 2 के दरमियान एंड टुडे इज मंडे. और आज भाई आपकी पसंद के ट्रैक्स को हम करेंगे शामिल, क्योंकि आज की प्लेलिस्ट जो है वो मेरी नहीं बल्कि आप लोगों की होगी. तो अपनी फेवरेट सॉन्ग की रिक्वेस्ट करें और साथ ये भी बताएं कि इस गाने से आपकी कोई स्पेशल मेमोरी जुड़ी है या कोई बात है या कोई किस्सा है जो इस ट्रैक से बहुत रिलेट करता है. दैट इज व्हाई यू लाइक दिस ट्रैक. होता है ना कि अक्सर औकात हमें किसी गाने को पसंद करने के पीछे कोई वजह मौजूद होती है, तो वो आपको बड़ा अच्छा लगता है. या कभी कभी आपको वो गाना पहली दफा सुनने में अच्छा नहीं लगता लेकिन दूसरी दफा सुनकर वो आपको बहुत अच्छा लगता है. इतना अच्छा लगता है कि वो आप रिपीट पर बस सुनते रहते हैं. सैटरडे वाले दिन भी हमने थोड़ी सी इस पर बात की थी, इसी वजह से आज मंडे वाले दिन हमने इसे रिक्वेस्ट शो के तौर पर आज हम पेश कर रहे हैं कि भाई आपके पसंद के ट्रैक्स को शामिल करेंगे. और बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रही है हमारे पास, तो आप 3636 पर मैसेज कर सकते हैं, यानी कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, KHI लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और सेंड कर दें 3636 पे. साथ ही साथ आवाज़ फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भी कमेंट कर सकते हैं. वहां पर हमने स्टेटस अपडेट कर दिया है, सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर मैसेजेस. तो वहां पर आप कमेंट करें, बताएं कि आप कौन सा ट्रैक जो है वो सुनना चाहते हैं, तो हम कर देंगे उससे शामिल. किस्सा ही खत्म. इतनी आसान तरीका कार है जिसे आपने फॉलो करना है और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना है. तो बिल्कुल जी, आप जल्दी जल्दी मैसेज करें और बताएं कि कौन सा ट्रैक आप सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, तो हम उसे करेंगे जल्दी जल्दी शामिल. अच्छा भाई, समी शेख का भी मैसेज आया, उसे भी शामिल करेंगे. नसीर खोसा भी हमें मैसेज करते हैं, लुकवल भी हमें मैसेज करती हैं, तो डील डन हो गई है. लेकिन उससे पहले हमारे पास अरबाज की रिक्वेस्ट मौजूद है कि आतिफ असलम का आप ये ट्रैक लगा दें, तो बिल्कुल जी हम जरूर लगा देंगे. आतिफ असलम तो मोस्टली सबके फेवरेट है, मतलब आतिफ असलम की तो मैं सोचती हूँ कि अगर हम एक दिन सिर्फ आतिफ असलम के ट्रैक्स को शामिल करें, सो ओ माई गॉड, एवरीबडी लव्स इट, बिकॉज आतिफ असलम का हर ट्रैक सबको बहुत पसंद है. और मुझे लगता है कि जहां तक मैं बात ये करूँ कि किसी ट्रैक से आपकी कोई मेमोरी जुड़ी है, तो आतिफ असलम के ट्रैक से तो आई एम श्योर कि सबकी चाइल्डहुड मेमोरीज भी जुड़ी होंगी. आई रिमेम्बर माई सिस्टर लव्स सो मच, मतलब उसको इतने पसंद है आतिफ असलम के गाने कि मतलब आतिफ असलम का कोई गाना रिलीज हो तो दिस इज इम्पॉसिबल कि वो गाना याद ना हो या पसंद ना आए, क्योंकि भाई आतिफ असलम तो हमारे आइकॉनिक स्टार हैं. मतलब आतिफ असलम की तो भाई क्या ही बात है. तो बिल्कुल ऐसे ही चलेंगे, आतिफ असलम के ट्रैक की जानिब चलते हैं जिसकी रिक्वेस्ट हम सरबाज ने की है, एंड देन वी विल बी राइट बैक.

0: It's 1:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
0: This program is brought to you by
2: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311117837
0: and
3: Shock of Anam Karachi Ki Takleef.
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
4: You're in tune with the lunchtime special on the big one, FM 100.

0: के जी, सो इस ट्रैक के साथ हम आ चुके हैं वापस, क्योंकि इसकी भी रिक्वेस्ट थी। तो भैया जितने भी ट्रैक्स हैं वो मेरी पसंद के नहीं बल्कि आपकी पसंद के चल रहे हैं, क्योंकि आज लंच टाइम स्पेशल में हम आपकी पसंद के ट्रैक्स को कर रहे हैं शामिल, यानी कि ट्रैक्स की रिक्वेस्ट करेंगे आप और चलाएंगे हम और करेंगे आप और हम साथ में इंजॉय। अच्छा भाई, तो लुकपल कहती हैं कि लंच में टिंडे गोश्त और दाल चावल हैं, मैंने मैसेज किया था आपको मिला नहीं। यस, वी आर नॉट गेटिंग योर मैसेजेस, दैट इज वाई एम सेइंग कि आप लोग आरजे फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर मैसेज कर दें ताकि हम बासानी आपके मैसेजेस को भी शामिल कर लें और आपके पसंद के ट्रैक्स को भी ऐड कर लें। अच्छा जी, टिंडे गोश्त और दाल चावल, आई नेवर ट्राइड दिस बिफोर। कैसे बनते हैं ये टिंडे गोश्त? टिंडे मतलब कैसा टेस्ट करते हैं? लाइक जस्ट लाइक लौकी सॉर्ट ऑफ लौकी कह रही हूँ मैं? हाँ सही कह रही हूँ कि मैं नहीं कह रही? नहीं, मैंने कभी खाए नहीं है, लेकिन टिंडे भी लोग बड़े शौक से खाते हैं। इनफैक्ट आई रिमेम्बर कि मैंने एक निवाला टिंडे का जरूर खाया, मैं याद करी कि किसने मुझे खिलाया था, वो बहुत मजे के कुछ बनाया था एंड दैट इज वेरी नाइस। लेकिन इत्तेफाक है कि हमारे घर में टिंडे कभी बने नहीं, लेकिन दैट इज सो नाइस, मुझे मजा आता है लोगों के लंचेस सुन के, जान के कि भाई कौन क्या खा रहा है क्या पका रहा है, तो मजा आता है उन सारी चीजों को जानकर। सो यस, आपके लंच में क्या है हमें जरूर बताएं, हम आपके मैसेजेस का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल ब्रेक की जानब चलते हैं और आते हैं वापस ब्रेक के बाद।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: This program is brought to you by
3: Step School से Foundation हो Strong. Call now at 03111117837
4: and Shaukat Khanum Karachi ki takleef.
5: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
6: FM247365.
7: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنے، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔

तो ट्रैक के साथ आ गए हैं वापस, क्योंकि भाई आज आप ही की पसंद के ट्रैक्स हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने हुए हैं। अच्छा, अभी बात हो रही थी टिंडे के हवाले से कि भाई लोकवल ने बताया कि आज उनके लंच में टिंडे गोश्त और दाल चावल हैं। और समी शेख कहते हैं कि टिंडे गोश्त बहुत अच्छी डिश होती है, टिंडे ठंडी सब्जी होते हैं। बिल्कुल जी, मैं तो रोजाना की बुनियाद पर ये कहती हूं कि हर चीज खाएं, हर सब्जी खाएं, ये चीजें बहुत फायदेमंद होती हैं। हम लोग जो हैं बहुत लिमिटेड और सिलेक्टेड चीजें खाने लगे हैं, चाहे वो ठंडे हैं, चाहे वो पालक है, वो बैंगन है, वो आलू हैं, वो जो भी चीज है, आप सारी सब्जियां, सारे फल और गोश्त भी खाएं, लेकिन हर चीज खाएं जरूर, लेकिन एतदाल के साथ। लेकिन सब्जियों का एड ऑन जरूर रखें आप लोग अपनी रोजमर्रा की डाइट में, क्योंकि ये बहुत जरूरी है और हर सब्जी के लातदायक फवायद मौजूद हैं जिसके बारे में हमें इतनी हावनो नहीं होती और हम नहीं खाते, लेकिन आप खाएं अपनी डाइट में, आप थोड़ा सा चेंज ला के देखें, आपको खुद अपनी जो है ना वो जिंदगानी में तब्दीली महसूस होने लगेगी। तो हर सब्जी हर फल बहुत जरूरी है, इसे जरूर आप लोग अपनी डाइट में ऐड किया करें, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, इसी के साथ साथ नबील जफर, जिसे सभी जानते हैं जो कि एक एक्टर हैं, तो वो ये कहते हैं अपनी एक पोस्ट पे, वो कहते हैं कि जी अपना मुल्क छोड़ने से पहले ये बात याद रखिएगा कि किसी भी और मुल्क में सब्जी के साथ फ्री का धनिया नहीं मिलता, तो अपने मुल्क छोड़ने से पहले इस बारे में जरूर गौर व फिक्र करें। एंड दैट इज सो नाइस एंड दैट इज सो फनी, बट द थिंग इज दैट कि शायद नबील ने भी इस बारे में नहीं सोचा होगा कि अब धनिया भी 40 से 30 रुपए का हो गया है, तो अब वो भी सब्जी वाले फ्री में नहीं देते। अब सब्जी वाले, अगर आप बहुत सारी सब्जी लें और उन्हें कन्विंस करें, तो वो आपको फ्री में हरी मिर्चें जरूर देते हैं, लेकिन अब के टाइम में धनिया या पुदीना तो फ्री नहीं देते हैं। वो साफ साफ कह देते हैं कि जी धनिया और पुदीना जो है वो 30 और 40 रुपए का है, वो हम आपको फ्री में कैसे दे सकते हैं। और मजे की बात क्या है कि धनिया और पुदीना की कीमतें वो कम भी नहीं करते, यानी कि 30 और 40 रुपए अगर चल रहा है तो आपको हर सब्जी वाला उसी कीमत पर दे रहा होगा धनिया और पुदीना, और उसमें वो एक रुपया भी कम करने पर तैयार नहीं होते। लेकिन हाँ, ये है कि ज्यादा सब्जी खरीदने के साथ ना आपको फ्री में हरी मिर्चें जरूर मिल जाती हैं, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी रहती हैं। लेकिन अभी फिलहाल जरा सब्जियां थोड़ी महंगी महंगी चल रही हैं, और महंगी महंगी सब्जियां चलने के साथ साथ जो है भाई, आज कौन से दिन मनाए जाते हैं इस पर तो हमने कोई बात ही नहीं करी, तो आपको बताते चलते हैं कि भाई आज जो है वो टोमाटीना फेस्टिवल मनाया जाता है। और टोमाटीना फेस्टिवल जो है वो बड़ा मशहूर है पूरी दुनिया में, ये स्पेन में खेला जाता है, अगस्त के जो लास्ट वेडनेसडे होता है उसमें खेला जाता है, लेकिन आज तो वेडनेसडे नहीं, सो व्हाई दे आर प्लेइंग दैट। लेकिन बेसिकली इनका रूल ये होता है, लेकिन लास्ट डे यानी कि 31st ऑफ अगस्त को जो है वो उसको खेला जा रहा होता है, और ये लोगों का बड़ा फेवरेट तरीन इवेंट होता है जिसे टोमाटीना फेस्टिवल कहा जाता है। और लोग जो है वो बड़े पैसे खर्च कर यहां पर जाते हैं और ये टिकट खरीदते हैं। और यू नो व्हाट, किस जो है इवेंट में क्या होता है टोमाटीना फेस्टिवल में, ये होता है कि सब लोग जो है वो टमाटर एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे होते हैं और टमाटरों के साथ नहा रहे होते हैं, तो इसे कहा जाता है ला टोमाटीना फेस्टिवल, जो कि स्पेन का एक मशहूर तरीन फेस्टिवल में से एक फेस्टिवल है, जिसके लिए लोग अपनी डेट्स और चीजें अकॉर्डिंगली बुक करते हैं कि अगर वो स्पेन जा रहे हैं तो टोमाटीना फेस्टिवल जरूर एंजॉय करें। एंड आई होप सो कि आपने कभी इसकी वीडियोस देखी होंगी या देखा होगा, एक फिल्म में भी इसका जो है वो पूरा सीक्वेंस दिखाया गया था कि टोमाटीना फेस्टिवल को किस तरह एंजॉय किया जा रहा होता है। लेकिन द थिंग इज दैट कि अगर हम इस वक्त पाकिस्तान की बात करें टोमाटीना फेस्टिवल को मद्देनजर रखते हुए, टमाटरों के साथ खेलना तो इस वक्त तो भाई नामुमकिनात में से है, क्योंकि टमाटर की कीमतें इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं। जहां टमाटर एक दूसरे पर फेंक कर एंजॉय किया जा रहा होता है, वहां पर यहां पर एक भी टमाटर अगर बचे तो उसको बड़ी हिफाजत से रखा जाता है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि टमाटर बड़े महंगे हैं भाई, तो इनका नुकसान तो हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन आज खसूसी तौर पर इस दिन को मनाया जा रहा था, तो मैंने कहा चलो जी अपने लिसनर्स को टोमाटीना फेस्टिवल के हवाले से भी आगाही फराहम करते हैं, और साथ ही साथ दूसरे ट्रैक की जानेब भी चलते हैं भाई। इस ट्रैक की हमसे रिक्वेस्ट की गई है और इन्होंने हमें मैसेज किया है, जी हाँ, क्योंकि आरजे फातिमा खान की फेसबुक पेज पर आप मैसेज कर सकते हैं, तो इन्होंने हमें मैसेंजर पर मैसेज किया है। ऑल राइट, यातफ हमें मैसेज करते हैं कि ये ट्रैक लगा दें। ओके, दिस ट्रैक इज ऑल्सो माई वेरी वेरी फेवरेट, ये डगाना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है हारून का, और मेहंदी है नहीं लेकिन ये मेहंदी से रिलेटेड है, सो एंजॉय एंड देन वी विल बी राइट बैक।

0: ओके तो आप लोग हारून के स्ट्रैक को एंजॉय कर रहे थे, साथ ही साथ हमने टोमेटिना फेस्टिवल का भी जिक्र किया कि भाई इस फेस्टिवल को स्पेन में बड़े जोशो खरोश से मनाया जा रहा होता है और लोग बड़ा एंजॉय करते हैं और साथ ही साथ वेट भी करते हैं इस इवेंट का, कि इस इवेंट का में हाजिरी लगाने के लिए लोग बड़े महंगे महंगे टिकट भी खरीदते हैं और एंजॉय करते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ हमने ये भी जिक्र किया कि टमाटर इतने महंगे हैं कि टोमेटिना फेस्टिवल अगर यहां पर किया जाए तो आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल और बहुत ज्यादा जो है वो उस पर खर्चा किया जाएगा, क्योंकि भाई बड़े महंगे हैं टमाटर और टमाटर को इस तरह नुकसान नहीं कर सकते हम लोग इस महंगाई को मद्देनजर रखते हुए। और अच्छी बात है भाई, मैं कहती हूँ आप बिला वजह में खर्चा ना करें, चीज को जरूर देखें और वैल्यू दें, ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर लें, लेकिन महंगाई है तो भाई एक्चुअली में जेन्युइनली महंगाई तो है ना, तो महंगाई को मद्देनजर रखते हुए आपको अपने बहुत सारे कामों को करना चाहिए। ऑलराइट जी, उसी के साथ साथ भाई आज आपके पसंद के ट्रैक्स चल रहे हैं तो आप आरजे फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर कमेंट करें और अपनी पसंद के ट्रैक के बारे में हमें जरूर बताएं कि आप कौन सा ट्रैक जो है वो सुनना चाहते हैं। अभी हमारे पास एक और रिक्वेस्ट भी आ चुकी है जिसे हम शामिल करेंगे और इसकी रिक्वेस्ट हमसे अली ने की है और कहते हैं कि जी इस ट्रैक को शामिल कर लें। और इनकी ट्रैक की रिक्वेस्ट के बाद मुझे भी याद आया कि बहुत टाइम हो चुका है हमने इस ट्रैक को अपने प्रोग्राम में भी शामिल नहीं किया है, वरना हम अक्सर औकात करे होते थे, लेकिन इट्स अ लॉन्ग टाइम हमने इसे शामिल नहीं किया, तो कोई बात नहीं जी आज कर लेंगे। डील जो है वो डन हुई जाती है। और इसी के साथ साथ आपके लंच में भी क्या है इसका भी जिक्र हमें जरूर बताएं कि व्हाट्स इनसाइड योर डब्बा। अच्छा भाई, आज ना मजीद इंटरेस्टिंग डेज जो है वो और बनाए नहीं जा रहे हैं। अच्छा, आज नेशनल ईट आउटसाइड डे भी है, यानी कि आज बाहर खाने का दिन मनाया जाता है। इंटरनेशनली तौर पर तो नहीं, नेशनली तौर पर, कि आप बाहर का खाना खाएं और एंजॉय करें। और मुझे लगता है कि ये तो बात कहने वाली है ही नहीं ना, क्योंकि बाहर का खाना शायद ही कोई ऐसा हो जो कहे कि हमें नहीं पसंद, क्योंकि बाहर का खाना हम सबका मोस्ट फेवरेट है। जितनी दफा भी खाने को मिल जाए हम तो बड़ी खुशी से हम ही भर लेते हैं, क्योंकि बाहर के खाने में जो अट्रैक्शन और अटैचमेंट हमारी मौजूद है वो शायद ही किसी खाने में। तो भाई बाहर के खाने की तो क्या ही बात है, मोस्टली सबका फेवरेट तरीन, तो आज इस दिन को भी मनाया जाता है। हाय जी, इसी के साथ साथ ब्रेक की जानब चलते हैं, आते हैं वापस ट्रैक के साथ, तो आपने कहीं नहीं जाना है, वी विल बी राइट बैक इन फ्यू मिनट्स।
1: This program is brought to you by
2: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311-111-7837
3: and Shock of Khanam, Karachi Ki Takleef.
4: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
5: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
6: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
5: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं, सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
6: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी। अपना BMI चेक करवाएं,
4: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें, वेट से आगे का सोचें।
7: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना। अभी जैसकैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैसकैश है ना।
1: This program is brought to you by
2: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311117837.
3: And Shock of Fanam, Karachi Ki Takmeer.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

जी जनाब, और आज बात हो रही है, होगी और होती रहेगी. जब हम बहुत सारी चीजों से गुजर रहे होते हैं तो ये हमें पता होता है. इसी तरह हालात और वाकयात जब एक दूसरे के साथ मिक्स एंड मैच नहीं हो रहे होते तो बहुत सारी चीजों में हमें समझ भी नहीं आ रहा होता बेसिकली. तो जनाब, अगर कोई चीज भी आपकी दस्तरस से बाहर है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो बस लेट इट भी कर देना चाहिए. और आज जनाब ऐसे ही है बहुत सारी जगहों पे. कराची में भी ये कुछ हालात की मैं बात करूंगी कि ट्रैफिक स्टक है, कहीं पे प्रोटेस्ट हो रहा है, कहीं पे हक मांगा जा रहा है, कहीं पे हक दिया जा रहा है, कहीं पे हक की बात ही नहीं है. और बड़े अजीब मामले और हालात और सिचुएशन है. डिजास्टर्स अपने अपने घरों में, अपने अपने माहौल में, अपने अपने महल्ले में, अपनी अपनी जगहों पे अगर देखा जाए तो. जो आज भी जब मैं आपसे मुलाकात करने के लिए रेडियो की तरफ आ रही थी तो मैंने देखा शारे फैसल पे डिफरेंट जगहों पे प्रोटेस्ट जारी है कहीं ना कहीं किसी उस चीज का. और हम पीस की बात करते हैं, हम बेहतरी की बात करते हैं, हम अच्छाई की बात करते हैं, वहां सबसे पहले बात हक की होती है. और हक जो है वो आपको कहा ये जाता है कि बिना बोले नहीं मिलता, बिना जताए नहीं मिलता. वल्लाहु आलम, लेकिन सुना आज तक यही है और हालात भी यही बता रहे हैं कि भाई हक जो होता है ना वो आपको लेना पड़ता है. कोई नहीं देने को तैयार होता. क्यों तैयार नहीं है? क्या वो सोसाइटी ज्यादा बेहतर है, ज्यादा अच्छी है, ज्यादा मोतबर है? जो पहले इंसान देखती है, पहले पहले जिंदगी देखती है, पहले मखलूक देखती है. हम बहुत सारे परिंद चरिंद जानवर को हम ये कह देते हैं कि भाई ये सही है, ये गलत है, ये रखना चाहिए, ये नहीं रखना चाहिए, लेकिन वो पहले एक जान है. इसी तरह इंसान जो है पहले एक जान है, उसके बाद कोई ऐसी चीज है जिसको आप उसके उससे फिगर आउट कर सकें. तो प्लीज जानों पे आके जो एक सॉफ्ट कॉर्नर वाला मामला होता है ना, वो जरूर करना चाहिए और जरूर होना चाहिए.

0: This program is brought to you by
1: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311-111-7837.
0: And
2: Shaukat Khanum, Karachi Ki Takleef.
3: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: Like us on facebook.com/FM247365 FM247365

0: It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे सिंगल रेमेडीज भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
2: कहीं फिर से रहमो चाचा अपना डांगा लेकर न आ जाए, वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे, मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ।
3: आमतौर पर यही समझा जाता है कि बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी सिर्फ अजनबी करते हैं, मगर ऐसा नहीं है। दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन पर माँ बाप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। बच्चों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, इनकी मर्जी के खिलाफ कोई इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं। जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है। तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं। मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्प लाइन 1099 पर कॉल करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
4: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।

0: کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: FM 24/7/365

0: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: FM247365

0: अच्छा।
1: FM 100's time check. It's 4 p.m.
2: अजरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो।
3: अहमद, हटो वहां से।
4: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
1: Like us on facebook.com/FM247365
2: FM247365 अजरा बहन, जरा बात तो सुनो।
3: हटो पीछे, भागो। अहमद, हटो वहां से।
4: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
1: FM 100 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।
5: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।

0: अजरा बहन जरा बात तो सुनो,
1: हटो पीछे भागो।
2: अहमद हटो वहाँ से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
5: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा ना होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात आपकी हिफाजत।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। FM 100 FM 247 365

0: अजरा बहन, जरा बात तो सुनो।
1: हटो पीछे, भागो।
2: अहमद, हटो वहाँ से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें। गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें। लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें। मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

मेहर देखे पीता देखे पीता, इश्क सोच के कीता देखे कीता, दिल देखे दिल लैन दी आस रखी वे बुलिया।

0: Coast. 110 FM. Your location for maximum music. FM 100's time check. It's 5 p.m.
1: जरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो।
2: अहमद, हटो वहाँ से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
5: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
6: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशन्स ओपन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111178377।

0: सर सब नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिंसों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 0300-0300-641 पर भेजें या सर सब पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनाम जीतने का। एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें। मजीद मालूमात के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें। तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा।
1: आज सुबह किसी का व्हाट्सएप और किसी का बैंक अकाउंट हैक हो गया और कहीं एक बिजनेस साइबर अटैक का शिकार बन गया। साइबर अटैक सिर्फ सिस्टम्स को नहीं जिंदगियों को भी टारगेट करते हैं, इसीलिए इग्नाइट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम ब्रिंग्स यू द 5th डिजिटल पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन। हैंड्स ऑन वर्कशॉप्स, रेड एंड ब्लू टीमिंग कॉम्पिटिशन्स। अगर आप स्टूडेंट हैं, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल या एथिकल हैकर, पाकिस्तान के अगले साइबर डिफेंडर बनिए। रजिस्टर नाउ एट cyberhackathon.pk।
2: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
3: शौकत खानम, कराची की तकलीफ।
4: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
5: Pakistan is building a safer, smarter digital ecosystem and we need your talent. Step up, build a cyber-safe life and unlock premier careers in cybersecurity at the 5th Digital Pakistan Cybersecurity Hackathon. Organized by Ignite under the Ministry of IT and Telecom, join hands-on training workshops in 16 cities and secure your future. Registrations are open now at cyberhackathon.pk.
6: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय सरसब्स नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा।
7: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें, हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान।
8: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
9: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
10: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैयां।
1: हुर्मत रसूल का तकाजा है कि तौहीन रिसालत से मुतालिक किसी भी खबर को बिना किसी तस्दीक के ना फैलाएं। ये पैगाम मुफाद आमा के लिए वजारत इत्तिलात व नशरियात व कौमी विरसा और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
2: 100 FM।
1: कुरानी आयात और अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम हम सब पर फर्ज है। ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 295B के तहत कुरान पाक की तौहीन काबिल सजा जुर्म है, जिस पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसको गंदगी या रद्दी में ना फेंका जाए। ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
3: Across the nation,
4: this is FM 100.

0: अजरा बहन जरा बात तो सुनो, हटो पीछे, भागो।
1: अहमद हटो वहाँ से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
4: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
5: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन व्हिच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशन्स ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
6: सर सब नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिस्सों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 03003046 पर भेजें या सर सब पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनाम जीतने का। एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें। मजीद मालूम के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें। तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा।

में थोड़ी तो कमी कर लेना क्यों यहाँ अनुभव लाभ फिर वही बहार की कमी बस किस्मत हमारे ही हाथ में है उसके इख्तियार की है कमी बस वो लोग भी गुजर गए वो घर भी चल चुके वहाँ कुछ नहीं वहाँ से अब दर्द उठे सफर तो भरेंगे दोस्त वक्त की मरहम में शिफा है पर वक्त पे रहे मैं दोस्त वो कब किसी के लिए रुका है मेरा सर फैले ना हाथ हमारे बस यही दुआ है कभी कभी आए सोच जो हुआ वो ठीक ही हुआ है सबसे सबक जो मिले हैं सबसे अब मेरी सुलह है कि कोई नहीं अगर तेरा तो मेरी

0: It's 5:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: Azra behan, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।

0: your location for maximum music. FM 100's time check. It's 6 p.m.
1: हजरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो। अहमद, हटो वहाँ से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: खालिस अज्जा, भरोसेमंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
4: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
5: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन व्हिच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
6: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला। मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला, जैज 5G।
7: वक्त खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
8: शौकत खानम, कराची की तकदीर।
9: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
10: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय सरसब्स नाइट्रो फॉल्स को लगा और जीत ताजा।
11: बैन अलावा सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हों, ऐसी ऑनलाइन एप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करती। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
12: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
13: कुदरत का निजाम तवाज़ुन पर कायम है।
14: वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाज़ुन बिगड़ जाता है।
15: घर के अफराद और आमदन में तवाज़ुन
16: हमारी जिम्मेदारी है।
17: खानदानी मनसूबा बंदी के तरीकों पर अमल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें।
12: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
18: facebook.com/fm247365
19: fm247365
20: fm100
21: 31 साल fm100 आपकी आवाज। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
22: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।

0: It's 6:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
0: This program is brought to you by सरसब्ज नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा।
2: facebook.com/fm247365 fm247365

0: जरा बहन जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो।
1: अहमद हटो वहां से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
4: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबिंग सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉब जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
5: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
6: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना? अभी जास्ट कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जास्ट कैश है ना।
7: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
8: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला। मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला, जैज 5G।
9: रोकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
10: शौकत खानम, कराची की तकलीफ।
11: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
12: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
13: सर सब्स नाइट्रो फोर्स को लगा और जीत ताजा।
14: facebook.com/fm247365
15: Today's hit music.

0: It's 6:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur
1: bhul ja. Azra behan, zara baat to suno. Hatu bhi, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: डॉक्टर खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
4: शौकत खानम, कराची की तकलीफ।
5: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
0: This program is brought to you by
6: सरसब्ज नाइट्रो फॉर्स को लगा और जीत ताजा।
7: 100 FM।
8: Hi friends, I am Mikal Zulfikar. And today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। FM 24/7/365

0: जरा बहन, जरा बात तो सुनो।
1: हटो पीछे, भागो।
2: अहमद, हटो वहां से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस फन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
5: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना? अभी जस्ट कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जस्ट कैश है ना।
6: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
7: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
8: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला। मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला, जैज 5G।
9: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
10: शौकत खानम, कराची की तकदीर।
11: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
12: नशा न परेशानियां खत्म करता है, इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।
13: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
14: तोहीन रिसालत, नफरत आमेज तकरीर और मजहबी फिरका वारियत का फरोग आईने पाकिस्तान के मुताबिक एक इंतहाई संगीन जुर्म है। सोशल मीडिया जैसा कि यूट्यूब, ट्विटर या केबल FM पर इस मैयत का गैर कानूनी मवाद नजर में आए तो FIA, साइबर क्राइम विंग, PTA या पेमरा को फौरी इतला करें। जिम्मेदार शहरी बने, मीडिया, इंटरनेट और सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल करें। मुफाद आमा का ये पैगाम आपको पेमरा की जानिब से पेश किया जा रहा है।
15: facebook.com/fm247365 fm247365

0: station for maximum music. FM 100's time check. It's 8 p.m.
1: जरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो।
2: अहमद, हटो वहाँ से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना। अभी जास्ट कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जास्ट कैश है ना।
0: 100 FM।
5: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला। मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला, जैज 5G।
0: FM247365 FM247365 FM100 31 साल FM100 आपकी आवाज। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान,
6: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।

0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: FM 247 365.

0: It's 8:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul
1: ja. Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago.
2: Ahmed, hatu wahan se.
1: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
0: This public service message is brought to you by FM 100. रात में गाड़ी चलाने के दौरान तेज रोशनी देने का मतलब ऐसा ही है जैसे दिन के वक्त हॉर्न बजाना। इसका गैर जरूरी इस्तेमाल मत कीजिए। ट्रैफिक कानून की पाबंदी कीजिए।
3: बैन अल-अक़वामी सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हों, ऐसी ऑनलाइन एप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए कर। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें। गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें। लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। FM 24/7/365

0: FM 100's time check. It's 9 p.m.
1: तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना? अभी जास्कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जास्कैश है ना?
2: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: शौकत खानम कराची की तकलीफ।
4: बैन अलावा सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हों, ऐसी ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करें। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: कुदरत का निजाम तवाज़ुन पर कायम है।
6: वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाज़ुन बिगड़ जाता है।
7: घर के अफराद और आमदनी में तवाज़ुन
8: हमारी जिम्मेदारी है।
9: खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों पर अमल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
10: FM247365
0: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
10: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey. This is

your location for maximum music.

चलो माइक चेक 1 2 3। अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। सभी सुनने वालों को अयाज अहमद की जानिब से आदाब। क्या हाल है, कैसे मिजाज शरीफ हैं? उम्मीद करता हूँ मजे में होंगे, ठीक ठाक होंगे। और जनाब हमेशा की तरह हमारे साथ नदीम अंसारी भाई, आदाब अर्ज है। कैसी तबीयत है? ठीक है, खैरियत से है। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद होते हैं उस्मान दी ग्रेट, उफरान भाई, सत्तार भाई, काफी सारे दोस्त। और एक दोस्त को मैं मिस करूंगा आज, हमारा बड़ा प्यारा दोस्त मोहम्मद अली, हमारे हेड थे, तो वो अब चले गए, लेकिन उनकी यादें, उनका प्यार, उनकी मोहब्बत, वो मुझे याद है। तो अली के लिए बेस्ट विशेस, जहां जाएं तरक्की करें। अच्छा जनाब, दिन है आज मंडे, और मंडे वाले दिन ओल्ड इज गोल्ड यानी पुराने गाने, फिल्मी गाने मैं आपको सुनाता हूँ, गजलें भी होती हैं। इसके अलावा और क्या क्या होता है, पीटीवी के दौर के गाने, यार क्या गाने होते थे पीटीवी वाले, या पता नहीं इसलिए शायद अच्छे लगते हैं। नदीम भाई को मैं शामिल करता हूँ इस गुफ्तगू में कि शायद वो हमारा बचपना उससे जुड़ा हुआ और वो सुनते चले आ रहे हैं, तो वो चीज रिलेट कर जाती है और अक्सर मैं इसका जिक्र करता रहता हूँ। लेकिन ये है कि अब जरा पीटीवी ने भी हल्का काम कर लिया, वो बनाते ही नहीं इस तरह के गाने, अब क्यों नहीं बनाते यार। वो महफिलें होती थी गजल की, इतनी अच्छी अच्छी गजलें आपको मिल जाती थी, फरीदा खानम जी की। आर्टिस्ट भी तो देखें कितने बड़े बड़े आर्टिस्ट थे यार, नगीरा, नूर साहिबा, जज्बा दिल, क्या बात थी यार। और ये टीवी पे उस दौर में ब्लैक एंड व्हाइट में भी चला करती थी और लोग बड़े गौर से वहां सुन भी रहे होते थे और टीवी पे इतने हिट हो जाते। खैर वक्त वक्त की बात है, अब भी चीजें बन रही हैं, लेकिन उनको अच्छे तरीके से अगर हाईलाइट किया जाए तो भी हिट हो सकती है। बहरहाल अब आज के शो में तो मैं वो तमाम सॉन्ग्स प्ले करता हूँ ज्यादातर जो हिट हो। अच्छा जनाब, मैसेज करने का तरीका फिर मैं आपको बता दूं, KHI space टेक्स्ट करेंगे, सेंड करेंगे 3636 पर। ड्राइव कर रहे हैं, इत्मीनान, सुकून, घर में बैठे हैं तो भी सुकून, घर वालों पे ऐसा नहीं। और आज कुछ बातें जरा फेसबुक की भी करेंगे, क्योंकि अब तो दौर जरा फेसबुक, इंस्टा, इन सब का आ गया। इस हवाले से भी कुछ अजीब अजीब खबरें मैं पढ़ता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ, मैं हैरान होता हूँ ये क्या हो रहा है दुनिया में। और सोशल मीडिया तो बिल्कुल ही अलग ही लेवल है भाई। चले जनाब आगाज करते हैं इस खूबसूरत ट्रैक से, मैडम जी की आवाज और जवानी की आवाज़।

0: Next up, it's time to go with Ayaz Ahmed. The show's the star of the show.
1: Star of the show.
0: Full volume, 9 to 11, Sunday to Friday.
1: Full volume.
0: It's a party that won't end. On FM 100, turn it up, let the music begin.
1: FM 100's where the vibes are proud.
2: This program is brought to you by
3: Shaukat Khanum, Karachi Ki Takleef.
4: एक लड़की जब पढ़ेगी तो अपने पैरों पर खड़ी होगी. एक लड़की जब पढ़ेगी तो खुद मुख्तार बनेगी. एक समझदार माँ बनेगी. सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे घराने की जिंदगी बदलेगी. आने वाली नस्लें संवारेगी. एक लड़की जब पढ़ेगी तो मुल्क को मजबूत बनाएगी. पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है. लड़की को पढ़ाएंगे तभी तो आगे जाएंगे.

जनाब वेलकम बैक, सुन रहे हैं FM 100 और साथ ही साथ जनाब मैसेजेस भी कर रहे हैं KHR स्पेस, टेक्स्ट करेंगे सेंड कर देंगे 3636 पर। मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त इस वक्त ड्राइव भी कर रहे हैं और मुझे सुन भी रहे हैं और मैसेज भी कर रहे हैं। आसिफ भाई क्या हाल है आपके, ठीक हैं, खैरियत से हैं? आसिफ भाई का नाम लिया और चाय आ गई गर्मा गर्म, वाह वाह वाह। आसिफ भाई के साथ ताल्लुक भी जरा चाय वाला है। इमरान भाई बड़ी मेहरबानी, जबरदस्ती चाय बनाते हैं। तो आसिफ भाई कह रहे हैं इतने पुराना गाना मेरे दादे के जमाने का लगा दिया। भाई जान दादे के जमाने की तो लग रहे हैं। मेरे भाई कहाँ तुम यार बर्गर बने घूम रहे हो यार, मैं बता रहा हूँ पुराने गानों में जो मजा है ना, नए गानों में इतना नहीं है, कुछ गाने अच्छे हैं लेकिन ज्यादातर जो मजा है ना वो पुराने गानों में। लेकिन आपके कहने पे एक जरा मैंने गाना निकाला है, जरा से जरा थोड़ा सा होगा नए स्टाइल में, और उसके बाद उसी गाने को मैंने कंप्लीट आपको सुना था। अच्छा भाई 3636 पर बिलावल भाई गिजरी से मैसेज कर रहे हैं, याद भाई आपको, सुंबल जी, कादिर भाई को, तमाम नजर को अस्सलाम वालेकुम। सर क्या हाल है? हाल मेरे बिल्कुल ठीक है, आप बताएं कैसे मिजाज है? ठीक है। नाहिद मुगल के भी मैसेज आ गए हैं, कह रहे भी अयाज बहुत अच्छी बात है, मैंने अभी स्टार्ट कहां की, मैं तो करता हूं बात तो वो चुप करा देते, नहीं करो भाई। एक तो पता नहीं कि वैसे हम जश्न आजादी मना रहे हैं लेकिन मुझे लग रहा है आजादी में थोड़ी कमी है, कहीं ना कहीं आजादी में कोई है मसला। कोई आजाद है तो इतना खुला आजाद, लोग पकड़ रहे हैं उसको। भाई रुक जा भाई, अब आजादी की मैं बात बताऊं, छोटे बुखारी का किस्सा। आसिफ भाई अगर आप सुन रहे हो, छोटे बुखारी में काफी कयाम और ताम मेरा वहां रहा तो मैं जानता हूं वहां किस तरह के लोग होते हैं। तो सुना गया है कि वो कोई पुलिस वाले थे, उनकी या तो वाइफ थी या कोई गर्लफ्रेंड।

0: अच्छा अच्छा टीवी चैनल वाले बुला बुला के कह रहे हैं भाई उनकी गलती है, डंबल उठा के ले आए, ये वो उनको डिफेंड कर रहे हैं। नहीं, वो यूं यूं। जिस मुल्क में ये हो जाए, ये चीज हो जाए तो फिर समझ लें। तो बहरहाल ये तो लंबी किस्सा है, इसको यहीं पे मुख्तसर करते हैं। बिलावल कह रहे हैं ग्रीन शर्ट्स इंग्लैंड से सेकंड टेस्ट मैच, बेटा वो तो हमारे जाहिर बात है, इसमें इतना सीरियस क्यों हो गया? जो टीम गई है तुम्हें लग रहा है ये शक्लें जीतने वाली लग रही हैं? नहीं बेटा, बहुत और ये देखो ये डेढ़ दिन में, दो दो दिन में हार रहे हैं, ये क्वालिटी, ये देखो पहले कभी नहीं, ये टाइम बचा रहे कॉम का, जल्दी जल्दी हार जाते हैं ताकि बच्चे काम पे लगे रहे, आसिफ भाई की तवज्जो फुल काम पे रहे। ये अगर पांच दिन खेलें और रिजल्ट फिर हार में आए, आपको ज्यादा गुस्सा आएगा। तो इनका शुक्रिया अदा करें कि वक्त पे, वक्त से पहले हारते हैं और आवाम का बहुत कीमती वक्त जो है वो बचा लेते हैं। इस मामले में हम शुक्रगुजार हैं पीसीबी की भी, अपनी टीम के भी। पीर एम इलियास सरकार, पीर साहब किथे हो? पीर साहब कोई दम दरूद कर दे पाकिस्तानी टीम पे भी, वो अच्छा खेल लें। अयाज भाई ग्रेट जॉब, आई लव इट, थैंक यू सर। पीर साहब बड़ी मेहरबानी, पीर एम इलियास, इलियास मेरे भाई का नाम भी है। और बेस्ट विशेस और विद यू एंड योर स्वीट टीम, फर्स्ट टाइम मैसेजिंग यू। अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी इलियास भाई, बड़ी मेहरबानी। नेक्स्ट टाइम भी आपने पीर एम इलियास भाई आपने लाजमी मैसेज कर दिया। जरी नूर आ गई, सलाम, कैसे हैं संजीदा को? संजीदा तो आज गायब है, संजीदा जी मुझे लग रहा है कहीं खाने पीने पे गई हुई, घर पे होती तो जरूर मैसेज कर देती। अच्छा जनाब, आसिफ भाई कह रहे थे बहुत पुराना गाना मैंने लगा दी, तो लीजिए जनाब ये जरा सा गाना तो पुराना है लेकिन जरा नए स्टाइल में, जरा चेक करें। पहले तो एक सबसे पहले शेर सुने आप।
1: से वाकिफ नहीं है जो तेरी खुशबू से वाकिफ नहीं है, वो फूलों से गुजारा कर रहे हैं। जो तेरी खुशबू से वाकिफ नहीं है वो फूलों से गुजारा कर रहे हैं।

0: वेलकम बैक सुन रहे FM 100 और साथ ही साथ मैसेजेस आपके पहुंच रहे हैं के HR स्पेस टेक्स्ट करेंगे सेंड करेंगे 3636 पर। अच्छा जनाब रमीज भाई भी आ गए, रमीज पठान भाई आ गए, अयाज भाई आपको, बिलावल, संजू और सब सुनने वालों को सलाम। भाई संजू जी की तरफ से भी मैसेज आ गया है, बल्कि वो कह रही है कि भाई लाइट का कोई इशू है, अभी तक हम लाइट पे नहीं कंट्रोल पाए, पर हम इसमें लगे हुए हैं दूसरे दूसरे कामों में जो बेफालतू काम है उस पे हमने तवज्जो दी हुई है कि भाई किसी तरीके से उसकी शक्ल ना नजर आ जाए। एक आदमी जेल में है, उसके बच्चे आके अगर बोल रहे हैं क्यों दे दिया भाई इंटरव्यू, सारी एनर्जी सारे पैसे उस पे लगा दिए, आम बेचारा हम जैसा आदमी जिसको छोटे छोटे मसले हैं कि गैस कब आएगी, गैस कब जाएगी, लाइट कब आएगी, लाइट कब जाएगी, बच्चे पिम्स अस्पताल में वो जल के चले गए इस दुनिया से, मासूम बेचारे फूल जैसे, जिक्र करते हुए भी दिल जो है ना जरा अफसुरदा हो जाता। कोई जिक्र नहीं उसका, कोई पैसे खर्च नहीं किए, कोई उस पे पैसे लगा देते यार, कोई उधर कोई पानी की कोई सिस्टम ऐसा रख देते, कुछ तो कर लेते अच्छा, वहां पे हॉस्पिटल्स को तो अच्छा बना लो यार, वहां तवज्जो दे दो। नहीं भाई इंटरव्यू क्यों दे दिया दो बच्चों ने, और वो क्या कह रहे हैं कि हमारे अब्बा को जो है इलाज नहीं सही कर रहे और हमसे मिलने नहीं दे रहे, इसमें क्या सियासत है, क्या बात है, इसमें क्यों हम लोग, मैं आपको बता रहा हूँ हम सबको बेवकूफ बनाया जा रहा है, इस चक्कर में लगाया हुआ आपस में लड़वाए, भाई हमें क्या लेना देना, हमारे अपने मसले सॉल्व कर दो भाई, हमारे घर में बिजली वक्त पे आ जाए, हमारे घर में गैस वक्त पे आ जाए, हमें क्या लेना देना, अब्बा से मिला रहे हो या नहीं मिला रहे हो, असल बात बिचारों ने की मिला दो यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, अपने टाइम अपनी एनर्जी क्यों जाया कर रहे हो, बात सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ भाई, अगर हमारे अब्बा जेल में होते, अल्लाह ना करे, आसिफ भाई के चलो मिसाल है, आसिफ भाई के अब्बा जेल में होते, एक मिसाल है किसी के भी अब्बा जेल में होते उससे मिलने ना देते, तो मैं भी आके यही बोलता भाई मेरे मुझे अब्बा से तो मिलने दो, अल्लाह मुझे माफ करना, अब्बा जो है वो ऊपर है जन्नत में, अल्लाह करे वो आला मकाम मिल जाए, लेकिन ऐसी मैंने जिक्र कर दिया कि अब्बा अगर जेल में है तो भाई क्यों नहीं मुलाकात करवा रहे, इसमें क्या सियासत वाली बात है, और उसका इलाज क्यों नहीं कर रहे भाई, काहे की सियासत में, सियासत बताओ इसमें कहां है सियासत, इसी बात पे ब्रेक ले लूं मैं, उसके बाद वापस आता हूं और मजीद अच्छे अच्छे गाने।
1: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के, महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैस कैश है ना।
2: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे, बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ, यही नहीं फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ, तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय शौकत खानम कराची की तकदीर।
4: Us on facebook.com/FM247365 FM247365
5: Active, yummy, adorable, zabardast. Babe, I've got a crush on you.
6: Ye pyaar to suno yaar.

जना वेलकम बैक, सुन रहे हैं FM 100। और बड़े गौर से सुन रहे हैं, फराज भाई का मैसेज आ गया। अजाज भाई एक और मसला भी डिस्कस कर लें, यूनिवर्सिटी रोड क्यों नहीं बन रहा। हाँ यार ये क्या, फराज भाई छा गया, कितनी प्यारी बात कर दी आप। ये मसले हैं यार, ये आम आदमी बेचारों के मसले हल कर दो, बसें सही कर लो। 1947 की बसें अभी तक चल रही हैं। X10 को देखता हूँ, मैं छोटा सा था तब से देखता आ रहा हूँ। घर वालों को बताता हूँ मैं यार, इसमें मैं कॉलेज गया था, यकीन नहीं आता, घर ये अभी भी चल रही है। मैंने कहा चल तो नहीं रही, इसको कांधे पे उठा के ले जा रहे हैं, जो स्पीड थी उसकी। इतनी पुरानी बस, मतलब हराम है, उसको चलना तो उसका बंद कर देना चाहिए, हर तरफ से धुआं उसका। उसके पीछे अगर गलती से गाड़ी आ गई है, या तो दमे से मर जाएगा या अंधेरे से, कहीं ना कहीं ठोक देगा गाड़ी, कोई नजर ही नहीं आ रहा, पूरा काला। क्या मसले, मैं क्या बोलूं, मैं ऐसी अपनी प्यारी प्यारी बातें आपको, जरा दिल की बातें मैं आपको सुना रहा हूँ भाई। हमें इन चीजों में मत फंसाओ, गरीब आदमी का जो है ना, सोचो यार उनके बारे में, सोचो सारी एनर्जी इधर लगाओ कि एक आम आदमी का क्या मसला है, उन बेचारों के क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करो। उसको फोटो ना निकल आए यार, मैं हैरान होता हूँ कसम खुदा की। इतना मैंने अपनी लाइफ में इतना डरपोक और इतनी इस तरह की चीज मैंने पहली दफा देखी है। बातचीत करेंगे और भी, अच्छा एक दो चीजें और भी हैं, वो भी फेसबुक पे देखी, वो भी मैं आपको डिस्कस करूँ। फिलहाल एक और खूबसूरत ट्रैक की जाने, आज वैसे काफी पुराने गाने मैं आपको सुना रहा हूँ।

0: It's 9:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
0: This program is brought to you by
2: Shaukat Khanum, Karachi ki takleef.
3: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी. मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है. इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं. अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
4: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है. सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है. अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें. डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें. पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें. गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें. लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें. मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें. याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है. डेंगू से बचाव, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
5: क्या आप जानते हैं कि आपका मोबाइल बैलेंस गैर इरादी तौर पर भी खत्म हो सकता है? ये अक्सर इस वक्त होता है जब आपका डेटा पैक खत्म हो जाता है लेकिन इंटरनेट के एज यू गो रेट्स पर चलता रहता है, जिससे बैलेंस तेजी से कम हो सकता है. पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से सार्फिन को आगाह किया जाता है कि ऐसे गैर जरूरी चार्जेस से मुहतात रहें. मोबाइल फोन ऑपरेटरों की जानिब से इस मसले के हल के लिए एक मुफीद और मुफ्त सर्विस मुतारिफ कराई गई है. इस सर्विस के जरिए आपका डेटा पैक खत्म होते ही इंटरनेट का इस्तेमाल खुदकार तौर पर बंद हो जाएगा, ताकि आपका कीमती बैलेंस महफूज रहे. सर्विस कॉल करने के लिए दर्ज सेल कोड्स डायल करें. जय सार्फिन के लिए *275#, जोंग सार्फिन के लिए *4004#, यूफोन सार्फिन के लिए *6611# और टेलीनॉर सार्फिन के लिए *342#. अपना बैलेंस महफूज रखें और गैर जरूरी चार्जेस से बचें. डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटीए.
6: ये मुफाद आमा का पैगाम अब तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है.
5: पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से तमाम मोबाइल फोन सार्फिन को आगाह किया जाता है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके कंप्यूटराइज्ड कौमी शनाख्ती कार्ड फाल होने चाहिए. याद रखें, अगर आपके जेर इस्तेमाल सिम के साथ मुंसलिक शनाख्ती कार्ड मंसूख कर दिया गया है या इसकी मियाद खत्म हो गई है या शनाख्ती कार्ड का हामिल फर्द वफात पा गया है, तो आपकी मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल की जा सकती है. लिहाजा किसी भी जहमत से बचने के लिए मोबाइल फोन सार्फिन को चाहिए कि जिन शनाख्ती कार्ड की मियाद खत्म हो चुकी है उनके फौरन तजदीद करवाएं. शनाख्ती कार्ड की मनसूखे से मुतालिक किसी भी मसले के हल के लिए नादरा से रुजू करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि सिम किसी वफाशुदा फर्द के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड ना हो. अगर आपकी सिम किसी वफाशुदा शख्स के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड है, तो कानूनी वारिस मुतलका कंपनी के सर्विस सेंटर मजाज फ्रेंचाइजीज पर जाकर जरूरी दस्तावेजात जमा करवा कर सिम की मलकियत अपने नाम करवा सकते हैं. शनाख्ती कार्ड की बरवक्त तजदीद मोबाइल फोन सार्फिन के तसलसल को यकीनी बनाने में मददगार साबित हो सकती है. पीटीए आपकी शनाख्त के तहफ्फुज और सार्फिन को महफूज टेलीकॉम सर्विसेज की फराहमी के लिए पुरअज़्म है. डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटीए.
0: FM 24/7/365
7: 947365
8: Active, yummy,
9: durable, zabardast.
8: प्यास तो सुनो यार।

है जनाब, वेलकम बैक, सुन रहे हैं FM 100 आयाज अहमद के साथ, और सुंदर भी हमें सुन रही है। सुंदर जी, क्या हाल है आपके? ठीक है, खैरियत से हैं? और जनाब बिलावल कह रहे हैं, सर छोटा भाई रावल आपको सलाम कह रहे हैं। रावल भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, सुंदर जी कह रही है कि रोमांटिक गाना, रोमांटिक नहीं था वो ये, आज मुझको क्या हुआ 50-50 भी याद आ गया उसे, उसमें भी ये गाना था, ये रोमांटिक नहीं, ये ऐसी टोन गाना था। कह रही है कि इसका म्यूजिक कुछ अजीब था तो सही, जो बात सही है वो मान लेनी चाहिए ऑन एयर, अजीब था लेकिन हिट हुआ था बहुत। कहनी मुझे लगा कि रोमांटिक, बिल्कुल नहीं रोमांटिक, कतन रोमांटिक नहीं था ये। अब जो गाना थोड़ी देर बाद प्ले करूंगा ना, वो रोमांटिक है, वो आप ही को डेडिकेट कर देता हूँ, ठीक है ना। बहरहाल जनाब, अपनी बातें हम कर रहे हैं और मुख्तलिफ मौजूआत के ऊपर भी, काफी सीरियस कोशिश करूं, बहुत सीरियस गुफ्तगु, कहीं इससे भी कॉमेडी टच नहीं आना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं, हालात ऐसे अजीबो गरीब होंगे। जिस चीज का हमें डिस्कस करनी चाहिए, जिसके हमने मसले मसाइल हैं उन पर बात करनी चाहिए, वो नहीं कर रहा है, दूसरी वाली चीजों में लगे हुए हैं। ये मेरी कोशिश है कि यार कम से कम यार उन चीजों के ऊपर डिस्कस करो जो मसले हैं। महंगाई इतनी हो रही है, उस पर कैसे कंट्रोल करें? पहले तो लोग निकल आते थे खान साहब के दौर में कैमरे शैमरे लेके, सारे वो अब सोए हुए, कोई भी नहीं आ रहा, कहां है वो लोग यार, किधर? अब ये मैं बात सही कर रहा हूं ना, अब ये उस तरफ जा रही होगी कि भाई ये देखो उनकी फेवर में, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये एक कयामत की निशानी है। अगर आप सच्ची बात कर रहे हैं तो वो कहेंगे वो है, ये उस तरफ जा रहा है। अब मैं क्या करूं, उन्होंने सारी सही बातें की। अच्छा, अगर हुकूमत में वो होते ना, जिनकी बात आप लोग समझ रहे हैं, खान साहब वाले, अगर वो ऐसे हरकत करते तो मैं डबल बोलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? जफर भाई मैं बिल्कुल ठीक, आप बताइए तबीयत कैसी है? इतनी सारी दुआएं लिख दी भाई, सब सुनने वालों को सलाम भाई, सबकी जानिब से वालेकुम सलाम, सबकी जानिब से वालेकुम सलाम आ गया आपको। असगर भाई मुझे जो है ना मैसेज कर रहे हैं, कॉल भी कर रहे हैं और अपना प्यार भी शो कर रहे हैं। असगर भाई लव यू, सिग्नल मेरे ख्याल से आपकी तरफ कोई मसला है या मेरी तरफ मसला है, बात नहीं हो पा रही आपसे, लेकिन आपका प्यार जो है वो मुझ तक पहुंच गया, बहुत शुक्रिया सर, प्यार की बातें हो रही। और महनाज जी को मैं कैसे भूल जाऊं, ये खूबसूरत सा गाना, सुंदर जी आप ही को डेडिकेट कर देता हूं, और वो है कैसे,

0: Turn it up. It's time to go with Ayaz Ahmed. The show's the star of the show. Full volume, 9 to 11, Sunday to Friday. It's a party that won't end. On FM 100, turn it up. Let the music begin. FM 100's where the vibes are proud.
1: जना वेलकम बैक सुन रहे हैं एफएम 100 और साथ साथ मैसेजेस आपके पहुंच रहे हैं कि एचआई स्पेस टेक्स्ट करेंगे सेंड करेंगे 3636 पर और सीमा बाबर आ गई हैं कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप और आप फेसबुक लाइव नहीं आए आना था क्या भाई किसी किताब में लिखा हुआ सीमा बाबर वो तो ऐसी पसंद शौक होता तो हम आ जाते हैं जिस दिन हमने शेव की होती है तैयार हुए होते हैं खुशबू लगाई हुई होती है उस दिन आ जाते हैं लेकिन आज जरा मैं टी शर्ट पहन के ऐसी शेव है बड़ी हुई अच्छा नहीं लगेगा फरीदा बुरहानुद्दीन आ गई है सलाम बेटा फरीदा बुरहानुद्दीन हूँ कैसे हैं आप तबीयत कैसी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और कुछ मेरी बातों पर उन्होंने नीचे लिख दिया कि समझ जाइए कयामत की निशानियां हैं तो नो डाउट कयामत की निशानियां तो हैं सॉन्ग इज सुपर डुपर चलन जी बड़ी मेहरबानी बहुत शुक्रिया समी शेख बड़े दिनों बाद नजर आ रहे हैं समी कितने गायब हो तुसी यार सलाम अलैकुम अयाज भाई कैसे हैं आई एम लिसनिंग द शो सलाम टू ऑल वालेकुम सलाम बाकी यार ये भी परेशान है बेहिस हुकूमत के ऊपर बड़े ये भी परेशान है कुछ नहीं हो सकता सर ये अगर लोग 10 साल भी रहना इस तरह तो यही हाल है जी मैं आपको बता दूं इसलिए उम्मीद करना मुश्किल है बिलावल कह रहे हैं सर अच्छा वो ट्राई सीरीज जिम्बाब्वे वर्सेज नामीबिया तीसरी कौन सी टीम है भाई वो भी हमें बता दो बिलावल भाई कह रहे हैं कि जिम्बाब्वे ने 195 6 खिलाड़ी आउट 20 ओवर में और नामीबिया ने 190 10 खिलाड़ी आउट भी हो गए चलो फिर भी मुकाबला तो पाकिस्तान से तो अच्छा खेले यार नामीबिया वाले ये बात मान लो यार और हुमा सिद्दीकी क्या कह रही है अयाज कुछ नहीं होने वाला इस मुल्क का मैं तो कह रहा हूँ मैंने तो दरी भी बिछा दी और रचिया भी पढ़ना शुरू कर दिए शायद कुछ हो जाए लेकिन आराम है अमरीका तो बस यार एक बात सुनो हमने ये गोरों को यहाँ से भगवाया कि भाई निकलो यहाँ से अब हम वो तो निकल गए अब हम भी चाह रहे हैं हम भी उनके पीछे निकलें 25-25 लाख रुपए के खर्चा करके किसी तरह पहुंच जाए क्या चाहिए भेजा क्यों उनको यार पर भेजने का क्या फायदा हुआ जब हमने अंग्रेज के ही मुल्क में जाना है उनके सिस्टम को एंजॉय करना अच्छा ये सारे सिस्टम वही हैं जो ट्रेन की पटरियां वही बना के गए थे ट्रेन से मुझे याद है खैबर में लुढ़क गई मतलब कहीं कोई जिक्र हो हराम है कोई अच्छी खबर सुनने को मिल जाए ना ट्रेन का जिक्र किया अभी ये खबर याद आ गई खैबर मेहर उल्टी पड़ी हुई सफर करना एक अजाब हो गया मैं तो कह रहा हूँ अल्लाह खैर करे पैदल निकल जाओ साइकिल निकल पे चले जाओ लेकिन इन ट्रेनों और बसों में मत जाओ ट्रेनों का बुरा हाल हुआ हुआ बेचारा गरीब आदमी जो पहले अब तो ट्रेन भी इतनी महंगी कर दी है और मजाल है जो उसमें कोई फैसिलिटी हो खैर बातचीत होती रहेगी टाइम चेक नजर आ रहा है कुछ सेकंड की ब्रेक भी तो दोस्तों मिलते हैं ब्रेक के बाद मैसेज करने का दिल चाह रहा है अगर आपका तो KHI स्पेस टेक्स्ट करेंगे सेंड कर देंगे 3636 पर और किसी रशीद भाई ने भी बड़ा अच्छा मैसेज किया थोड़ी देर बाद मैं पढ़ता हूँ मिलते हैं भाई ब्रेक के बाद

0: FM 100's time check. It's 10 p.m.
1: तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना? अभी जास्कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जास्कैश है ना।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: शौकत खानम कराची की तकलीफ।
0: facebook.com/fm247365 fm247365 fm100 31 saal fm100 aapki awaaz assalamu alaikum pakistan assalamu alaikum pakistan pakistan
3: Active, yummy, adorable, seven. Say that guy crush on you. Ready to be asked to sunoyad.

जनाब वेलकम बैक, सुन रहे हैं FM 100 और सुंदर जी कह रही है महंगाई पे आज की बातें हैं। सदियों से महंगाई पे बातें चल रही हैं, चल रही हैं। महंगाई जो है ना ये कम नहीं हो रही, बंदे कम हो गए दुनिया से, महंगाई ना कम हुई। अयाज भाई खूबसूरत शो, खूबसूरत आरजे, खूबसूरत ट्रैक्स, सो नाइस टू यू। रशीद खान कराची आ रहे हैं। रशीद भाई कैसे हो आप? ठीक हो, खैरियत से हो? बिलावल कह रहे हैं सर तीसरी टीम साउथ अफ्रीका की। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मेरे ख्याल से किसी कोई अपसेट भी हुआ था, साउथ अफ्रीका हार गई थी ना बीबीएस। अच्छा जनाब, असगर भाई कह रहे हैं कोई फायदा नहीं, बाकी सही कह रहे हैं। वैसे इतने सदियों से कोई फायदा नहीं हो रहा, लेकिन एक बात है कहते रहना चाहिए, हो सकता है कुछ फायदा हो भी जाए। जफर साहब कह रहे हैं कि भाई आप सॉन्ग्स बहुत अच्छे से सुना रहे हैं। चलो जफर भाई बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।

क्या ना भाई, पाकिस्तानी ट्रेन और W11 में अब कोई फर्क नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ W11 फिर भी बेहतर होगी। जिस तरीके से ट्रेन खैबर मेल उल्टी पड़ी हुई थी, मैं तो देख के हैरान हो गया। अल्लाह रहम करे यार, अल्लाह रहम करे आम आदमियों के ऊपर। बस भाई देखभाल के और खुद अपने खुद अपनी हिफाजत करनी है आपने। अच्छा जनाब, इसी बात पर यह गजल याद आ गई।

क्या बात है जनाब, अमानत अली साहब की खूबसूरत आवाज, खूबसूरत यार ये आर्टिस्ट है वाकई में। अच्छा जनाब, मैसेजेस कर रहे हैं 3636 पर और बहुत सारे दोस्त जो हैं वो आ गए हैं। इसके अलावा सीमा बाबर कह रही कोई बात नहीं, क्या लिखा है उन्होंने भैया, कह रहे हैं कि आप हर गेटअप में अच्छे लग रहे थे। अच्छा चलिए, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, प्यार है आपका। और इसके अलावा अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जनाब, और अब अच्छा इतनी बातें कर दी, गाने वैसे के वैसे रह गए। एक और ट्रैक मुझे याद आ रहा है और आवाज द ग्रेट मेहंदी हसन साहब की। वैसे ये गाना जो है खातून की आवाज में भी है, तू मेरी जिंदगी है, लेकिन मेहंदी हसन साहब ने भी कमाल गाया है।

जना वेलकम बैक सुन रहे हैं एफएम 100 और साथ साथ मैसेजेस कर रहे हैं 3636 पर। और बिलावल कह रहे हैं सर आज संजीदा जी खामोश है, उनका फोन आ गया था, वो कह रही है कि भाई लाइट का जरा इशू है लेकिन प्रोग्राम में सुन रही हूँ। संजीदा जी खुश रहे आप और इतनी सारी दुआएं, इतना सारा प्यार आप जो देती हैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई जैसे फेसबुक खोले ना तो कोई ऐसी कोई अच्छी खबर सुनने को मिल जाए, नामुमकिन। अभी ऐसी मैंने जरा यू मैंने कहा जरा चेक करूं फेसबुक में क्या है, जैसे ही ओपन किए ना पहली खबर चेक करें हम, टोरंटो से पाकिस्तान जाने वाली परवाज में उड़ते साथ ही आग निकलने लग गई, बरवक निशानदेही पे जहाज को 12 मिनट बाद ही वापस उतार लिया गया, बड़ा हादसा टल गया। चलो भाई ये तो खबर हो गई ना, अब आप नीचे कमेंट पढ़ें जरा, मेरा दिल ऐसे चाहता है मैं कमेंट भी पढ़ लूं। पहला कमेंट देखें, इट्स रूटीन इशू डोंट वरी, मतलब जो कमेंट करने वाला है उसके लिए कोई हैरानी परेशानी है ही नहीं, वो कह रहा यार ये इसमें कौन सी बड़ी बात है, उतर गया ना कामयाबी से, मतलब इतनी बेहिसी भी होगी यानी बंदा पहले वो फो क्या हो गया अल्लाह रहम करे, ये ना वो कह रहा रूटीन है यार, हम ही परेशान हो रहे हो तुम लोग। अच्छा जनाब इसके अलावा जनाब और मैं देखता हूँ ये दो पार्टियां बन गई इंडिया पाकिस्तान इस तरह का ना कोई माहौल बन गया, एक जो है टाउट जो वो है तबसरे करने वाले वो एक इस बार गवर्नमेंट की साइड पे, एक जरा दूसरी वाली साइड, लेकिन दिन दोनों टीमों का काम चल रहा है, ये दोनों पैसे कमा रहे हैं, आप और हम सुन रहे हैं कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है, अब इसमें फंसे हुए हम, अब अपने अपने हिसाब से समझ रहे हैं, अच्छा ये ठीक बात की होगी, हाँ ये सही है, दूसरे की सुन लो भैया ये नहीं यार ये सही नहीं लग रहा, नहीं तुम तो उस पार्टी के हो जब भी तुम्हें सही नहीं लग रहा, ये एक मुसीबत हुई हुई है, मतलब अब आप अपनी राय पे नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि ये गलत या सही है, वो दूसरे ने फौरन जज कर लेना, ऐसा मनहूस माहौल बना दिया है, अब सही बात भी नहीं बंदा कर रहा डर के मारे। सलीम मेहमान आ गए, सलाम अयाज भाई आप कैसे हो, 100 चाहे दुनिया हो खफा पे तू क्यों खफा चल रहा, सलीम सलीम मेहमान क्यों खफा चल रहा, खुश खुश गाने सुन, ये चेक कर दिए फूफा आपको डेडिकेट करता हूँ और सलीम मेहमान आपको भी।

0: नहीं तो
1: The best of 90s, 80s and today's with Ayaz Ahmad. This program is brought to you by
2: Shaukat Khanum, Karachi ki takleef.
3: क्या कम उम्र बच्चियों से मुशक्कत लेना सरासर ज्यादती नहीं? क्या ये उम्र उनके काम करने की है या पढ़ने और हंसने खेलने की? उन पर काम का बोझ ना डालें, उनसे उनका बचपन ना छीन। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जहनी, जिस्मानी और तालीमी हक फराहम करता है। बच्चों से मुशक्कत लेना एक काबिल सजा जुर्म है। आइए बच्चों से मुशक्कत से इनकार करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
1: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
4: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365
5: Full volume with Ayaz Ahmed, 9 to 11, Sunday to Friday. It's a party that won't end.
6: Oh, so loud.

Right, and now welcome back to Sunray FM 107.7. Saath messages bhi aap log kar rahe 3636 par. चाची मेरी जो है ना प्यारी सी वो भी सुनिए. चाची क्या हाल है आपके? ठीक है, खैरियत से हैं. बहुत सारी दुआएं आपके लिए. चाची मेरी थोड़ी सी परेशान है और चाची के जो मसले मसाइल हैं वो मैं समझ सकता हूँ. चाची के लिए बहुत सारी दुआएं भाई. अल्लाह पाक उनको सेहत दे, जिंदगी दे और जो थोड़ी थोड़ी परेशानियां हैं अल्लाह पाक सब दूर कर दे. आमीन बोले सारे मिलकर. आमीन सुम आमीन. रानी हुसैन भी आ गई. रानी हुसैन कैसी हैं आप? सलाम. और रुजदी का गाना पसंद आ गया. ठीक हो गया जनाब. अच्छा जी, और इसके अलावा क्या जबरदस्त सॉन्ग प्ले किया है तू मेरी जिंदगी है. मेहंदी हसन साहब वॉइस वॉकी बहुत जबरदस्त है. मेहंदी हसन साहब के एक दो और गाने और भी हैं, मैं थोड़ी सी देर में चलाता हूँ. फिकर मकबा. अच्छा गयास का मैसेज मैंने पढ़ लिया. गयास भाई कैसे हो? ठीक हो? मुल्तान की सूरत हाल बताओ, क्या है? गर्मी सर्दी बारिश क्या हो रही है? अच्छा जनाब, एक और गजल मुझे नजर आ रही है. वाह वाह वाह वाह, शामिल करेंगे नैयारा नूर की आवाज. और क्या हिट गजल है ये भी है.

ऑलराइट जनाब, वेलकम बैक सुन रहे हैं एफएम 100 और बिलावल कहने सर सॉन्ग स्लो लेकिन अच्छे हैं। बड़ी मेहरबानी सरकार, बड़ी मेहरबानी। आज पाकिस्तानी जरा फिल्मी गाने हैं ना तो स्लो भी हैं, गजलें भी हैं तो जरा गजलें स्लो ही होती हैं। बहरहाल आपको पसंद आ रहे हैं बिलावल भाई, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा चाची कहनी प्यार भरा सलाम और ढेरों दुआएं चाची के लिए भाई। वाह वाह वाह, चाची खुश रहे आप, चाची के लिए बाकी ढेरों दुआएं। और गयासुद्दीन बलबन मुल्तान से मैसेज कर रहे हैं और फिर क्या कह रहे हैं वो, रात को बेहतर है मौसम, दिन में भी पहले से बेहतरी। अच्छा जनाब, देखो बारिश वारिश सुना भाई, इस्लामाबाद उधर बड़ी टिका के हुई है, कराची में तो हुई नहीं बारिश यार, सिर्फ गाने सुन सुन के एंजॉय कर रहे हैं हम।

हाँ, क्या बात है जनाब, जबरदस्त ट्रैक अहमद रुश्दी की, फिर आवाज। फुप्पा एंजॉय कर रहे हो कि नहीं कर रहे? अच्छा जी, रानी कह रही है चाची को मैंने, भाई आप ही की तरफ से, दोबारा मैं बोल दूं भाई, चाची के लिए दुआएं जो है रानी ने भेजी है, रानी हुसैन ने दुआएं भेज दी है सबके लिए। ठीक हो गया रानी जी, हूं कोई शिकायत? अच्छा जनाब, इसके अलावा बिलावल फिर कह रहे हैं अल्लाह ताला चाची जान की तमाम परेशानियां दूर करे, आमीन सुम्मा आमीन। रुबाब कह रही है आप सबको सलाम, अमीर हो जो वो भी दुख में है, अगर दुख नहीं खुशी कैसे एंजॉय करो बोलो। रुबाब तुम्हारा लेक्चर मुझे समझ में आया नहीं, तुम्हारा फलसफा मेरे सर के ऊपर से यूं बाउंसर की तरह गया, हाँ मुझे समझ आया, दोबारा मुझे जरा अच्छे साफ सुथरे आसान अल्फाज में जरा बताओ मुझे कि क्या हो रहा है। एक भाई ने मैसेज किया था, कह रहे हैं सफर बचाने के लिए मैंने 3 किलोमीटर जो है पैदल चल रहा था, 1000 का नोट इसी रास्ते में गिर गया, यानी बचत कर रहे थे बेचारे यार, और फिर यार वैसे अफसोस हुआ, पैदल चल रहा था कि किराया विराया बचा लूं मैं थोड़ा, लेकिन फिर भी वो ये यार जी पाकिस्तानियों पे है कुछ वैसे तो मसले हुए हुए हैं, ठीक काम भी कर रहा आदमी तो उसमें भी गड़बड़, बेचारे ने पैसे बचाने की कोशिश की होगी, रास्ते में 1000 का एक नोट था वो भी गिर गया, बता मैं क्या करूं, मैं भी सुन रही हूँ मैसेज, सॉरी नहीं करता, कोई ऐसी बात नहीं मिसेस फारूक, ऐसी कोई बात नहीं, आपका प्यार आपकी मोहब्बतें हमारे साथ।

0: best of 90s, 80s and today's.
1: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना। अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैस कैश है ना।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: स्वागत खानम कराची की तकलीफ।
0: facebook.com/fm247365
3: fm247365
4: yummy
5: adorable 7
6: se na kar kuch on you.

जनाब, वेलकम बैक सुन रहे एफएम 100 और साथ ही साथ मैसेजेस आप लोग कर रहे हैं के चार स्पेस टेक्स करेंगे, सेंड कर देंगे 36361। अस्सलाम वालेकुम अयाज भाई, यूसुफ पापोस सर कैसे हैं? यूसुफ भाई बड़े दिनों बाद आपका मैसेज पहुंचा है। तमाम सुनने वालों को सलाम, एफएम 100 की तमाम फैमिली को सलाम, आंटी चाची उरूसा गुलबानो तमाम डॉक्टर सबको सलाम दे दिया भाई, कोई नहीं पीछे, खिताब गुल लाला सब सबको सलाम। चले जी वालेकुम सलाम, गुफरान को भी सलाम, लेकिन आज गुफरान की ड्यूटी नहीं है, आज सत्तार भाई दी ग्रेट की ड्यूटी है। अच्छा जी नाइस सॉन्ग जरी नूर बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा हुमा क्या कह रही है, हुमा का भी, हुमा सिद्दीकी कह रही है इतना गुस्सा है सब में, सीधी बात भी बुरी लगती है। वैसे आपने सही बात किया, आजकल ना नॉर्मल बात भी किसी से करो ना वो गुस्से में हो रहा था, समझ नहीं आया, समझे खासतौर पर ट्रैफिक पे किसी को बोलना भाई जरा साइड पे क्या हो गया, क्या ऐसा बंदा कहता है यार क्या हो गया, दुम पे पांव रख दिया इसके, क्यों भाई कह रही है। अच्छा बुरा लगती है लेकिन आपका शो आपकी बात रिलैक्स का है, सो स्वीट हुमा जी, बस रिलैक्स रहे सुकून के साथ रहे, मैं तो यही कोशिश करता रहता हूँ लेकिन बस मैं क्या करूँ। चाची के लिए दुआएं भेज दी है जरी नूर ने, जरी नूर क्या कहने आपके। अच्छा जनाब एक और खूबसूरत ट्रैक। अच्छा ये पीटीवी के दौर का, और ये पीटीवी पे ये गाने बनते थे, नाहिद अख्तर जी तो छाई हुई थी उस दौर में,

0: best of 90s, 80s and today's with Ayaz Ahmad.
1: Alright, jana, welcome back. Sun rahe FM 100 aur saath hi saath messages bhi 3636 par. अच्छा जनाब, एक बड़ी अच्छी बात हमारे एक दोस्त ने भेजी, कह रहे हैं भाई तेल पैदा करने वाले ममालिक में वजीरों के लिए तेल फ्री नहीं है, यानी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं मुल्क तेल उनमें जो वजीर है वहां के उनके लिए तेल फ्री नहीं है, जबकि कर्जों पर तेल खरीदने वाले मुल्क के गुजरा के लिए जो ऑयल है वो मुकम्मल फ्री है, समझ रहे हैं ना आप, यानी जो तेल पैदा कर रहा है वहां के वजीर उनके लिए कोई भी फ्री नहीं है, और जो हम जैसे मुल्क जो कर्जा ले रहे हैं उनके वजरा मुकम्मल फ्री पेट्रोल, तो क्या खाक तरक्की होगी, कैसे तरक्की होगी खुद बताएं मुझे आप। अच्छा जनाब, रुबाब कह रही है आयाज आपकी आवाज बहुत, आपको आज पता लगी रुबाब, तेन हूं पता लगी है मालूम आपकी क्या बात है। सत्तार भाई को सलाम, सत्तार भाई की जानिब से वालेकुम सलाम, चलें जी बड़ी मेहरबानी। और इसके अलावा कराची के हालात देखकर बारिश भी भाग जाती है जरीनूर, अच्छी बात तो खैर नहीं की आप, लेकिन है ऐसा ही है। रानी जी कह रही है जबरदस्त सॉन्ग, रानी जी बस सारे गाने आज आपके लिए, एक और खूबसूरत ट्रैक

0: best of 90s, 80s and today's with Ayaz Ahmad.
1: भाई जनाब वेलकम बैक सुन रहे हैं FM 100 और साथ साथ मैसेजेस कर रहे हैं रमजान पठान कह रहे हैं अयाज भाई नदीम अख्तर हमारे को बहुत पसंद है नदीम भाई की क्या बात है हमें भी नहीं नाहिद अख्तर अच्छा नाहिद अख्तर बहुत पसंद है और हमें नदीम अख्तर पसंद है अभी थोड़ी देर बाद उनका शो आएगा नाहिद अख्तर की तो क्या कहने जनाब क्या कहने और अपने नदीम अख्तर के भी अच्छा जी किसी भाई ने मुझे मैसेज भेजा लेकिन अभी तक मुझे यकीन नहीं आ रहा दोस्तों बिलावल अगर सुन रहे हो तो जरा कंफर्म करके बताओ कह रहे बिजली की कीमत में 0.01 पैसा फी यूनिट के हिसाब से कमी की मंजूरी इतना बड़ा रिलीफ 0.01 पैसा और पेट्रोल जो है हाई स्पीड डीजल 19 पैसे और पेट्रोल जो है वो 50 पैसे फी लीटर से इसके मुकाबले में तो ज्यादा किया 19 पैसे और 50 पैसे यार जी हमें वैसे एक बात है आवाम को क्या समझ रहे हैं कितना बेवकूफ ऐसा क्यों है यार इतनी अगर कमी करनी है तो क्या जरूरत है कमी करने की इतना एहसान क्यों कर रहे हैं लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये कॉमेडी किसी ने किया है सीरियस ऐसा होगा नहीं यार हर बात भी मैं यकीन नहीं करता जो सोशल मीडिया पे आ जाती है लेकिन बदकिस्मती से ज्यादा 99% बातें सही निकल आती हैं इनके हवाले से जो होती हैं मुझे डर लग रहा है कहीं ऐसा है तो नहीं जनाब छोटी सी ब्रेक मिलते हैं ब्रेक के बाद

0: This program is brought to you by
1: Shaukat Khanam, Karachi ki Takbir.
2: पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कोर्ट उसका नौजवान तबका है। पाकिस्तान की 60% आबादी 18 से 35 साल की उम्र के अफराद पर मुश्तमिल है, जो एक मुनफरिद आबादियाती सरमाया है। नौजवान हमारी मईशत की

0: स्टेशन पर।
1: मुनशियात को न कहीं जिंदगी को हाकें, आइए इस खतरे के खिलाफ मुतहिद। नशे से पाक नौजवान एक मजबूत मालियाती पाकिस्तान। AMF का साथ दें, मुस्तकबिल बचाएं, कौम को मजबूत करें।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: FM 247 365
4: Active, yummy, adorable, seven.
5: ये प्यार तो सुनो यार।

0: गठबंधन।
1: गुलाम अब्बास साहब भी बड़े दिल से गाते थे। अच्छा एक बड़ा पुराना गाना मुझे
0: ओ तेरे आजा,
1: नजर आ रहा है और रीना परवीन, नाम बड़ा मुश्किल है, ये 50s के दौर का लग रहा है मुझे, थोड़े थोड़े मैं आपको समझा, यही नाम है ना, आयरन परवीन, आयरन की कमी। हाय हाय नदीम भाई शुक्रिया।

अच्छा जनाब, और आगे बढ़े बढ़ते हैं जनाब, बढ़ते हैं। हमारी प्यारी सी बहन नौरीन तौसीफ भी आ गई है। लो भाई, ये पूरा इंसाइक्लोपीडिया है मेरी बहन, फौरन बता देती है जवाब। भाई हैं, भाई कह रही है अस्सलाम वालेकुम नदीम अख्तर भाई, के कैसे मिजाज हैं? शरीफ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सदा हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन सुम आमीन। तमाम हसीन तरीन समातों को मेरी तरफ से सलाम और ढेरों सलामती की दुआएं। कहती है मैदा दिमाग से ज्यादा जहीन होता है। आप अपने मैदे को दिमाग की जगह लगवा लें। लगता है इसीलिए इतना

लगता है इसीलिए इतना ज्यादा चल रहा। खैर ये क्या कर देता है, ये उल्टी कर देता है, जबकि दिमाग खामोशी से सारा गंद निकल जाता है। बात तो यार बड़ी अकलमंदी वाली की है। मैदा कैसे उल्टी करता है, उल्टी तो हम करते हैं। मैं थोड़ा सा मस्ती कर रहा हूँ भाई, मस्ती मजाक तो कोई बुरा ना मना है। वैसे बात बड़ी अकलमंदी वाली है, जरा सुनिएगा, अच्छी बात को जो है गौर से सुनना चाहिए। यानी मैदा दिमाग से ज्यादा जहीन होता है, ये उल्टी कर देता है जब दिमाग खामोश, जबकि दिमाग खामोशी से तमाम गंद जो है सारा गंद निकल जाता है। मैदा जब कोई नुकसान दे चीज बर्दाश्त नहीं कर पाता तो उसे उल्टी करके बाहर निकाल देता है। लेकिन इंसान के दिमाग अजीब है, ये लोगों की तल्ख बातें, धोखे, दुख और तकलीफें सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त करता रहता है। हम हर वो चीज निगल लेते हैं जो हमें अंदर से तोड़ रही होती है, सिर्फ इसलिए कि रिश्ते ना टूटे, लोग नाराज ना हों या हमें कमजोर ना समझा जाए। वाह वाह वाह, काश इंसान भी अपने जहन का वो गंद बाहर निकाल पाता जो उसे अंदर ही अंदर खा रहा होता है। बड़ी खूबसूरत बात की, लेकिन मेरी बहन ऐसे लोग जो हैं वो इस दुनिया में जी नहीं पाते जो अपने जहन का गंद बाहर निकाल देते हैं। यकीन माने उनको बड़ा बुरा समझा जाता है। मेरे दिमाग में कान के जरिए जिसने कोई गंद डाला है, मैं उगलने की बजाय उसको उगल देना चाहिए कि भाई मेरे कान में ये आपके बारे में गाया, भाई सलीम भाई आपके बारे में ये कह दिया, भाई सलीम मेमन भाई इस बंदे ने मुझे आपके बारे में ये कहा है। अच्छा हमारा क्या होता है, ये जो दिमाग में गंद किसी ने डाला उस गंद को रिफाइन करते हैं, उसको चमक देते हैं उसको, और फिर जब सामने वाले के सामने पेश करते हैं, बल्कि सामने जिसके बारे में ये गंद हमारे दिमाग में डाला जाता है उसको नहीं बोल रहे होते हम, उसके और कोई जानने वाले ना उसके कान में ये बात डालेंगे, भाई मैं तेरे को बात बताता हूं किसी ने बताया। अच्छा इस हवाले से एक बड़ा जबरदस्त तजर्बा भी किया है, और किन्होंने किया है आपको हैरत हो, चीनियों ने स्कूल में एक तजर्बा किया इस बात पर, नौरीन तौसीफ की बात पर मैं बात करता हूं। तजर्बा ये किया कि एक स्कूल में उन्होंने ये तजर्बा किया, और स्कूल में तजर्बा इस तरह किया कि 100 बंदों की एक लाइन लगा दी उन्होंने, मतलब एक के पीछे एक, सॉरी 100 ज्यादा कह दिया मैंने, एग्जैजुरेट होगी कर दिया मैंने बहुत, तकरीबन 25 या 50 थे, तो 25 या 50 बंदों की उन्होंने लाइन पूरी खड़ी कर दी। और उसके बाद जो सब उन सबको ये बोल दिया कि पीछे नहीं देखना आपने, ठीक है ना, तो लाइन किस तरह खड़ी थी कि पीठ थी हर एक के पीछे, मतलब एक जो बंदा खड़ा हुआ है तो पीछे जो लाइन में बंदा खड़ा हुआ है वो उसको देख नहीं पा रहा है, ठीक है, इस तरीके से सब खड़े हुए हैं। तो सिर्फ पहला बंदा जो है उसका मुंह उस बंदे की तरफ है जो उसको कुछ बता रहा है, और उसके बाद पीछे जब वो लाइन की तरफ देखता है तो सबकी पीठ है, ये जहन में रखिएगा, बड़ी आसान सी बात बता रहा हूं। तो उस बंदे ने उनको बताया इशारे में उसको कुछ बताया, इशारा करके, जैसे कि मेरे हाथ में खुदाल है और मैं जमीन खोद रहा हूं, ठीक है, तो मैं इशारे से कैसे बताऊंगा, मतलब उसने उस बंदे को कोई भी एक ऐसा अमल था वो इशारे से करके बताया, और किसी ने भी जुबान से नहीं बोलना था, और हर एक को फिर उसके बाद वो इशारे से उसने बताना था कि ये खुदाल जो है वो जमीन खोदने के लिए खुदाल है और जमीन खोदी जा रही है। तो आखिर में जब आखिर तक जब वो इशारा गया तो वो कुछ और ही बन चुका था। तो बस होता हकीकत ये होती है कि जब हमारे कान में ये गंद जो के कहा गया है बातों के जरिए, हमारे कान के जरिए हमारे जहन में डाल दिया जाता है, हम उसको और रिफाइन कर रहे होते हैं, रिफाइन करने के बाद जिसके मुतालिक ये बात होती है उससे नहीं करते, उसके किसी जानने वाले से जरूर करेंगे और उसको बताएंगे, भाई और मसाले लगाकर, 4-5 मसाले हमने अपनी तरफ से भी तो लगाने ना, हमारा भी फर्ज बनता है, मसाले लगाकर हमने उनको बता दी। जब उनको बात ये पता चली तो उन्होंने बोला, अच्छा यार ये मैं तो इसको ऐसा समझता नहीं था, ये ऐसा निकला यार, कैसी बातें कर रहे हो यार, हो नहीं सकता, वैसे यार हो भी सकता है यार। तो फिर उन्होंने उस कचरे को अपने दिमाग में डाला और उसको भी उन्होंने रिफाइन किया, रिफाइन से मुराद ये कि उस कचरे को और बदबूदार किया, रिफाइन से मुराद ये है।

मैं ये वर्ड बोलना नहीं चाह रहा। और फिर उन्होंने उसके रिश्तेदार को बता दिया और उस बंदे को पता ही नहीं है कि उन्हें कितना की है भाई। हैं जी, हैं जी। लेकिन अगर जो आखिरी पैराग्राफ है नौरीन तौसीफ ने जो मुझे भेजा है, काश इंसान अपने जहन का वो गंद बाहर निकाल पाता जो उसे अंदर ही अंदर खा रहा होता है। अगर जिस इंसान के बारे में आपके जहन में ये गंद डाला गया है उसी के सामने सब जाकर बात कर ले तो हकीकत उसी वक्त पता चल जाती है। यानी कि समझ रहे हैं ना आप कितनी सीरियस बातें करती हैं भाई आपने। और खैर, इस कचरे को हम किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं सबको पता है। अच्छा, भाप से चलने वाला जो पहला बहरी जहाज था वो इन्होंने बता दिया कि किसने, किस मुल्क ने मनाया था, किस शख्स ने मनाया था और किस सन में मनाया था। वाह वाह वाह वाह, क्या बात है भाई। और कह रही है मेरी रूह जान को, लाला को, मुश्क को, जरीन को, सबा गुल को और सलाम, ढेरों दुआएं सॉन्ग डेडिकेट कर दीजिएगा उनको। तो बिल्कुल कर देंगे, डोंट वरी डोंट वरी। और यार आपकी मैसेज तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। इसी बात पर हम ब्रेक की जाने वाले हैं, गाना चला नहीं सकते। चले आपके मैसेज ही पढ़ लेते हैं दो मिनट और। और जनाब अस्सलाम वालेकुम, यूसुफ भाई वाला हो गया। पीर मोहम्मद इलियास साहब आ गए हैं और कह रहे हैं भाई जान मोस्ट वेलकम, आई होप यू आर गुड। और जी गुड गुड गुड। पीर मोहम्मद इलियास साहब बहुत बहुत शुक्रिया। इंग्लैंड और आयरलैंड में बने थे, कौन बने थे साहब ज्यादा बता रहे हैं। ओके भाई जान, सवाल का जवाब दिया इन्होंने। इफ्तिखार भाई आ गए आज तो, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, कैसे हैं आप। सॉरी 11 दिन का के बाद शामिल हो रहा हूं। हाय हाय नदीम भाई। मेरी रहनुमाई करें यार, मैं परेशान हूं यार। मैंने दोस्त का जिक्र किया था, बिल्कुल कर किया था आपसे, उसके उसको कैसे भूल पाऊं। प्लीज जरा आप तरकीब बता दो, मैं 20 दिन बाद नहीं करता, शिद्दत पर जाती नहीं है। मैं उससे 1000 टाइम मोहब्बत करता हूं, वो 2% भी नहीं। देखिए भाई, इसमें आपको एक और बात बताते हैं इफ्तिखार भाई, 1000 आपने जो कहा है मैंने अपने हेलमेट के ऊपर भी लिखा हुआ है, आई लव यू 3000। ये कौन सी फिल्म का डायलॉग है कोई बता देगा ना, यकीन माने कि उसके जो भी गाना गएगा वो चलाऊंगा। पाकिस्तानी हूं मगर अंग्रेजी भी हो सकता है, पाकिस्तानी या अंग्रेजी। तो इफ्तिखार भाई, बात यह है कि देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इंसान की इज्जत, सेल्फ रिस्पेक्ट। जो इंसान आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं करता, अगर आपने ये जो अभी आपको जो दुख है, जो शिद्दत है, जो तकलीफ है, यकीन मानिए कि ये जो आपने 1000% अपनी मोहब्बत का और 2% उसका लिखा है ना, तो जब आप उनसे अपना रिश्ता दोबारा इस्तेवार करने की कोशिश करेंगे और जब आपकी इंसल्ट होगी तो ये 1000% उधर चला जाएगा और 2% आपकी तरफ आ जाएगा, यानी कि वो बेइज्जती 1000% वाली होगी, ठीक है ना, और आपकी बर्दाश्त 2% वाली होगी। यानी कि समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे। कहने का मकसद सिर्फ इतना है भाई, अपनी इज्जत जो है ना, इज्जत नफ्स, सेल्फ रिस्पेक्ट, उसको देखें आप। यकीन माने अल्लाह ताला ऐसे लोगों को, अच्छे लोगों को, जो अच्छे लोग होते हैं, अल्लाह ताला उनसे, उनका दिल दुखाने वाले, उनको जर्ब पहुंचाने वाले लोगों को दूर कर देता है। तो ये अल्लाह ने आपको जो है उनको आपसे दूर कर दिया है, तो बस ये इसको अल्लाह की रजा समझो और आराम से लिहाफ ओढ़कर सो जाओ। हैं जी, संजू आ गई यहाँ। अरे संजू का मैसेज ये तो रोमन में लिखना मुश्किल है। बिजली बाजिया आ गई है, आती हूँ उर्दू पर। संजू आपको वेलकम कहेंगे और थैंक यू वेरी मच। 3636 पर आपका आया मैसेज। भाई जरीन नूर तो कह रही है बिजली से चलती है, लेकिन आपने तो बताया कि बिजली आपकी बाजी है। अच्छा, बिजली बाजी आ गई है, ये बड़ी अच्छी बात है। तो चलें, रौनकें बहाल हो रही हैं, माशाल्लाह से सब आ रहे हैं।
اور سلیم میمن صاحب بھی آگئے ہیں، سلام سنے ہو، لیکن سلیم میمن صاحب کے میسج سے پہلے ہم جائیں گے ایک بریک کی جانب.

0: FM 24/7 365. FM 24/7 365.
1: वेलकम बैक कहेंगे सुने आप सबको, आपके मैसेजेस आ रहे हैं 3636 पर, और इस वक्त हम आपको लेके जाएंगे एक बहुत ही प्यारे से ट्रैक की जानिब। तहा जी ने ये गाना गाया है, और क्या गाया है, क्या गाया है, क्या गाया भाई, एल्लो फड़ो।

Welcome back, Zone O. मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कहते हो NH Zone O. म्यूजिक ट्विस्टर में मैं हूं आपके साथ, आपका और मेरा साथ है जनाब एक बजे तक, और एक बजे तक करेंगे खूब हल्ला तिगुल्ला. सलीम मेमन साहब का मैसेज पढ़ते हैं. वैसे तो उन्होंने बहुत सारे मैसेज किए हैं, मगर हम एक पढ़ेंगे और उसके बाद हम जो है दूसरे मैसेज जिसकी जानिब जाएंगे, और इनके मैसेज हम थोड़ा सा बाद में ब्रेक लगा के पढ़ेंगे. सलाम सुनो अमीन भाई को सलाम, और आज अयाज भाई के शो में चाची का SMS आया था, उनने भी उन्हें भी सलाम और ढेरों दुआएं. सलीम मेमन कह रहे हैं सलाम में असल में S की जगह R लिख दिया था इन्होंने. मैंने बोला ये क्या भेज रहे हैं भाई, चाची को क्या भेज दिया भाई ने, पता चला सलाम भेजा, बड़ी अच्छी बात है. जोया शहजादी आ गई है, यानी कि हमारी प्यारी सी बहना हलीमा पठान, कह रही है सलाम अलैकुम अख्तर भाई, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक है, माजरत के साथ काफी दिन नहीं सुन सकी. कोई बात नहीं मेरी प्यारी बहना, काम जो है वो ज्यादा जरूरी है. अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, यानी कि समझ रही है ना. हाँ, और कह रही है आज मेरे बेटे अहमद की बर्थडे है. अरे वाह भाई वाह.

0: वेलकम बैक कहेंगे सुने हो आप सबको मैसेजेस आपके आ रहे हैं 3636 पर और बढ़ते हैं आपके मैसेजेस की जानिब समी भी आ गए हैं क्या कह रहे हैं समी बहुत कुछ कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई कैसे हैं आप सलाम टू ऑल लिसनर एक गाने की फरमाइश कर दी है नहीं चला रहे भाई हम हमारी मर्जी भाई आज ट्रांसमिशन और आवाज दोनों सही आ रहे हैं शुक्र है फिर चला देंगे पहला सॉन्ग ही धमाकेदार लगा दिया भाई वाह जी वाह चप्पू कहते हैं स्टिक्स को जिससे कश्ती चलती है शादी के बाद ये चप्पू कहीं और भी चलते हैं तुम्हारी शादी होने वाली है और इम्तियाज स्टोर आया हुआ था अम्मी ने घुमा घुमा के थका दिया बेटा ये तो कुछ भी नहीं है बेगम जितना घुमाएगी ना वो आपको पैदल भी घुमाएगी और तो आपका दिमाग भी घुमाएगी आदतें डालो ये अरे आदत डाल भी रहा हूँ स्टोर से घर पे आ गया पूरा शो सुन रहा हूँ शुरू में मैसेज किया आप बस तीन चार लोगों के मैसेज बार बार पढ़ते हैं ये तुम औरतों वाली कहानियां क्यों आ गई है तुम मेरे बच्चे फुल टाइम सर से दुपट्टा उतारो मेरा शहजादा लेडीज वाली बातें नहीं करते लेडीज को अच्छी लगती है अच्छा और आगे बढ़ते हैं समी के इतने ही मैसेज आएंगे आखिरी वाला शिकायत वाला आया भाई और जोया शहजादी यानी कि हलीमा मेरी प्यारी सी बहना कह रही है थैंक यू बर्थडे विश करने का अरे हम अपने प्यारे से अहमद को जो है गाना भी डेडिकेट करेंगे यानी कि समझ रही है ना उर्दू आते हैं उसको जरा मैं रखो बताओ अगर उसको उर्दू समझ में आता है तो उर्दू चलाए इंग्लिश आता है समझ में तो इंग्लिश चलाए और अगर पख्तू समझ में आता है तो पख्तू गाना उसको डेडिकेट करे तो लिहाजा मेरी प्यारी सी बहना हलीमा बताना अहमद को बर्थडे मुबारक कहा है समी समी तोहफे भी देते हैं बच्चों को हाँ कंजूसी नहीं करनी अच्छा जी आपको पता है शादी करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है आदमी को अपनी अच्छा बेइज्जती लिखना चाह रहे थे क्या आदमी को क्या फायदा होता है शादी के बाद बेइज्जती करने वाले बाहर नहीं जाना बेइज्जती करवाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता घर में ही अच्छी खासी बेइज्जती हो जाती है सलीम अहमद साहब ये आपके जो हालात हैं उसकी जो आप तर्जुमानी करते हैं भाई क्या बात है समी जरा सुन लो गौर से अच्छा हमारे अनीस भाई आ गए हैं कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हैं आप और तमाम एफएम 100 के लिसनर्स को प्यार भरा सलाम वालेकुम अस्सलाम सुनो अभी मैंने शो सुनना शुरू किया है दोबारा बताइए मेरे बारे में सलीम अहमद बस एक दफा ही बता दें इनामो लग गया रहे अस्सलाम वालेकुम अख्तर भाई कैसे हैं आप आंटी चाची संजीदा सलीम भाई और तमाम सुनने वालों को उन्होंने सलाम कहा वालेकुम अस्सलाम इनामो हक भाई कह रहे हैं सवाल क्या आज सवाल ये है कि मनोड़ा में किस जगह पर है किस मकाम पर है आप मूड हो रहा आने का मनोड़ा में किमाड़ी में मेरा ख्याल अच्छा जी अमीन चार्ली कह रहे हैं नदीम भाई एक डेडिकेशन कर दीजिए बड़ी मेहरबानी होगी आतिफ असलम का सॉन्ग और तू जाने ना भाई मैं वाकई नहीं जानता ये इंडियन गाने जो होते हैं ना आतिफ असलम की वो वाकई में नहीं जानता यानी कि समझ रहे हैं ना आप हाँ वाह भाई वाह माशाल्लाह से जी कह रही है सबको उर्दू पश्तो बलोची सब समझ में आता है बच्चों की बात कर रही है ये हमारी प्यारी सी बहन हलीमा और थैंक यू समी को भी कहा है तो हलीमा बस हम बहुत अच्छा जबरदस्त किस्म का गाना चलाएगा डोंट वरी और अदीला मेरी बहन आ गई कह रही है सलाम बहुत ही प्यारे भाई नदीम हमेशा की तरह लाजवाब शो अल्लाह पाक आपको नजरे बच से बचाए और आमीन संजीदा आपी को सलाम और एक सॉन्ग डेडिकेट कर दे
1: कर देंगे डोंट वरी
0: और आप ये जो कहते हो ना हल्ला गुल्ला ये काफरीन ने मक्का का काम था और उमर यजदानी साहब क्या बात की आपने इसी खुशी में आप चैनल चेंज कर लें और कहीं और गाना सुने यानी कि समझ रहे हैं ना भाई एक बहुत ही खतो किताबत वाला طویل میسج آیا 3636 پر ہمارے انیس بھائی کا, وہ ہم پڑھیں گے مگر حالے نہیں پڑھیں گے. اس کی وجہ ہے کیونکہ ابھی ہم جا رہے ہیں ایک پیارے سے ٹریک کی جانب, اور یہ ٹریک جناب ہم ڈیڈیکیٹ کریں گے. بھائی سنجو آپ کو ویسے تو بہت ساری ڈیڈیکیشنز آئی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے جی, لیکن ابھی ہم جو ٹریک چلا رہے ہیں یہ دو دو کر کے ہم ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں آپ کو. جو ہے زرین نور نے بھی ڈیڈیکیٹ کیا ہے, عدیلہ نے بھی ڈیڈیکیٹ کیا ہے, نورین توصیف نے بھی ڈیڈیکیٹ کیا ہے, اور ایک اور مجھے نام یاد نہیں آ رہا, انہوں نے بھی ڈیڈیکیٹ کیا. تو یہ چار ہو گئے, تو لہٰذا پلیز برا نہیں منائیے گا, ہم دو دو کر کے ڈیڈیکیٹ کریں گے. ابھی پہلا گانا جو ہے وہ ہم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں جناب عدیلہ کی جانب سے اور زرین نور کی جانب سے, ایلو پھڑو.

0: वेलकम बैक कहेंगे सुनो आप सबको दिल की लगी कुछ अरबे। आई होप यू लाइक दिस ट्रैक। और आगे बढ़ते हैं जनाब आपके मैसेजेस की जानेब। अनीस भाई आपका मैसेज अभी पढ़ते हैं हम। कौसाए की जानेब से मैसेज आया, हमारी प्यारी सी बहना फरीदा बुरहानुद्दीन आई है, कह रही है कि क्या हाल है,
1: क्या आप उसे जानते पहचानते हैं, वो कौन है? फरीदा बुरहानुद्दीन, अरे वो मेरी बहन है।
0: अच्छा जी भाई, चप्पू का पता नहीं है,
1: पप्पू का पता है। जिसे देखकर मेरे दिमाग का इंजन का बस एकदम गर्म हो जाता है। भाई क्या बात की है आपने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
0: लेट मैसेज पड़ा मैंने इनका, जब मैं चप्पू के बारे में भी पूछ रहा था। सवाल मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ इसी तवस्सुत से। सवाल आज मैंने जो फ्लोट किया हुआ है जनरल नॉलेज का, क्या आपने ये बताना है भाव से पहला चलने वाला बहरी जहाज किस मुल्क ने बनाया था, बताने हैं हमने। अच्छा भाई, हनीमा के को अपने बेटे की सालगिरह की मुबारकबाद, पेश खिदमत है। अल्लाह पाक अहमद की उम्र दराज करे और हर कदम पर कामयाबियों से नवाजे, आमीन सुम आमीन। ये कह रही है हमारी प्यारी बहना नौरीन तौसीफ। और संजू कहती हैं, इनाम भैया, अमीन भैया, सलीम भैया खुश रहें, शो की रौनक आप सब हैं, बेशक आप भी हैं। और शुक्रन प्यारी जरीन और अदीला, ओके कहती है कि पता है रूहेमन, मैं लोगों से नाराज नहीं होती, बस मेरा उन पर से दिल उठ जाता है, तब मुझे वो लोग मौजूद होने के बावजूद कहीं दिखाई ही नहीं देते। कितना तकलीफ देता है रवैया, तकलीफ दे रवैया होता है। वाह भाई वाह, रोहेमन की बातें ही ऐसी होती हैं भाई, क्या बात है। और नौरीन बहना आपका भी थैंक्स कहा है हमारी प्यारी सी बहना हलीमा ने। एंड और आगे बढ़ते हैं आपके मैसेज के जाने पे, अनीस भाई के मैसेज की जाने बातें। अनीस भाई ने बड़ा तवील सा मैसेज किया है और इसमें बेतहाशा तारीफें लिखी हुई हैं। मुझे मतलब थोड़ा सा अजीब सा भी फील होता है यार, इतनी तारीफें भाई, ये आपकी हुस्ने समात है मैं हमेशा कहता हूँ, लेकिन आम नाराज ना हूं इस वजह से आपका मैसेज पढ़ लेता हूँ भैया। और कह रहे हैं कि इन्हें भाई हर बंदे में अल्लाह पाक की तरफ से कोई ना कोई गुड गॉड गिफ्टेड क्वालिटी होती है और ये फैक्ट है। कुछ लोगों में गॉड गिफ्टेड क्वालिटीज मैं आपको बताता हूँ, और आपको अल्लाह ने बेहतरीन आरजे बनाया है अल्लाह जी, थैंक यू सो मच। लेकिन कुछ लोगों में गॉड गिफ्टेड जो चीजें होती है ना वो नेगेटिव वाली होती है, दिमाग उल्टा चल रहा होता है फुल टाइम, किसी को अच्छा देख नहीं सकते। कोई गाड़ी खरीद ले उनको आग लग जाती है, अच्छे कपड़े पहन के आ जाए तो आग लग जाती है, आप प्यारे लग रहे हैं तो भी आग लग जाती है, आप मेले कुचले बोलते हैं यार ये सही है। तो अब अक्सर लोग तो बेचारे मेले कुचले रहना शुरू कर दिया उन्होंने, उन्होंने बोला भाई इस तरह लोग खुश होते हैं, चलो इसी तरह सही। अच्छा जी, और कहते हैं कि आपकी बातों में वो क्वालिटी है कि लोग आपसे, अच्छा ये बड़ी तारीफें हैं भाई, मैं जो है ना बहुत बहुत शुक्रिया यार, सो नाइस ऑफ यू। मतलब ऐसे वो होगा कि अगर मैं आपका मैसेज तो आपको खुश करने के लिए पढ़ रहा हूँ कि भाई ने मैसेज किया इतना प्यारा सा, लेकिन लोग समझेंगे अपने मुंह मियां मिट्ठू बना हुआ है भाई, अपनी तारीफ में जितने भी मैसेज है सब पढ़ लिया है भाई। तो लिहाजा बहुत बहुत शुक्रिया आपकी उसने समात का कि आप में इतना प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं। सॉरी नदीम भाई, कुछ मसरूफियात ही हैं जिसकी वजह से कभी कभी शो नहीं सुन पाती हूँ, प्लीज खफा मत होना। सबागुल कह रही, सबागुल मेरी प्यारी सी बहन, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ आपसे, जीती रहो। बस ये होता है कि हम ऐसे ही पूछ लेते हैं, मैं ना पूछ भी नहीं सकते क्या, रुलाओगी क्या। इनामुल हक कह रहे हैं कि भाई जान सॉन्ग अकेलड़ी बदोबदी टेणे नेणे। और सलीम भाई को डेडिकेट कर दीजिएगा, सलीम भाई की अभी भी आंख लड़ रही है। अच्छा भाई कोशिश करेंगे, पक्का वादा नहीं है, 12:05 हो चुके हैं, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। और आज मैं बहुत गुच्छे में हूँ। सुने हो आप मेरे सारे SMS को पढ़े। सलीम मेमन कह रहे, सलीम मेमन आपके सारे SMS पढ़े अभी तक। मैं रुको, 1 2 ये भी पढ़ा था, 3 और 3 ही 4 नहीं नहीं 3 मैसेज किए हैं अभी तक आपने।
2: मेरे पास जो मैसेज आपके आए हैं वो सिर्फ 3 आए हैं। ये 2.5 किलो का हाथ जो है ये समझ रहे हो ना तुम?
0: अच्छा कहाँ गया मैसेज भाई इसका? ये रहा। अच्छा जी, महानूर कह रही है लाला गायब है। जी लाला बिल्कुल गायब है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि लाला मसरूफ है, आप लोगों ने लाला को गाना डेडिकेट किया, हमने किया, अभी हम लाला की जानिब से भी गाना डेडिकेट करेंगे, डोंट वरी। सवाल का जवाब है, ओहो वाह वाह मेरी प्यारी सी बहन, जीती रहो मुस्कुराती रहो जरीन नूर, इसने भी बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया है नौरीन की, नौरीन बहना की जानिब से, नौरीन तौसीफ बहना। अच्छा मैं एक बात बताऊं, गाना मैंने कोई और चलाया पख्तों का, कौन सा था, आशिकाने क्या था, मैं जब गाना चलता है ना तो तब मुझे याद आता है कौन सा था। ये वाला गाना चलाया था मानूर, जमा सरदार हथौड़ी चलाया था। सलीम मेमन आपको पता है, ये वाला गाना था, तुम गलत गाना समझो मेरी बेन। अच्छा भाई आपको पता है शादी करने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? ये आपने दोबारा मैसेज भेजा है, दोबारा पढ़ दिया। नदीम भाई सिल्वर स्टॉलन जॉन रेम्बो ओरिजिनली किस कंट्री से है? साहिबजादा ये आप मुझसे सवाल कर रहे हैं या मुझे बताएंगे, पहले ये बताइए। अच्छा अमीन कह रहे हैं वालेकुम अस्सलाम, सिल्वेस्टर स्टॉलोन। कभी कभी होता है ये सीन शीन वाले जो नाम होते हैं ना, यकीन माने कि फुल टाइम जो है ना बैंड बजा देते हैं, यानी कि समझ रहे ना, गबल्ले हो जाते हैं उसमें। अमीन कह रहे हैं वालेकुम अस्सलाम, सलीम भाई जिस सलाम कई तमाम को, जिस जिसने सलाम किया उन तमाम को मेरी जानिब से वालेकुम अस्सलाम, खुश रहें सब। नदीम भाई आपसे सवाल है, वाह वाह वाह वाह, हमारी बहन का क्या हाल है? मुश्क नाम है, मुश्क, वैसे उनका नाम मुश्की है लेकिन उनका निक है मुश्क, और सॉरी नाम मुश्क है, उनको निक उनका मुश्की है, और देखो यार मेरा भी दिमाग घुमा दी। और इनामुल कह रहे हैं मनोड़ा भाई जान, इनामुल हक यार प्रोग्राम बनाने का पता नहीं क्यों ऐवी दिल कर रहा है मनोड़ा आने का। खैर जी महानूर कह रही है थैंक यू, और आपके मैसेज और भी बहुत सारे हैं यार, लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि यार मैं एक और गाना सुनाऊं आप लोगों को। अभी हम जिस ट्रैक की जानिब जा रहे हैं, ये ट्रैक एक्सक्लूसिव ट्रैक है, और ये एक्सक्लूसिव ट्रैक से मुराद ये है कि आतिफ असलम का नया गाना आ चुका है मार्केट में, और ये अमीन भाई की जानिब से डेडिकेट करेंगे जनाब सबको, एलो फड़ो।

वेलकम बैक कहेंगे सुने हो आप सबको सुना सजना आतिफ असलम का नया गाना और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा। सवाल मैंने आपसे ये किया है जनाब, भाप से पहला चलने वाला बहरी जहाज किस मुल्क ने बनाया था, ये सवाल है। और अभी तक जो जो लोग इसका जवाब दे रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त जवाब दे रहे हैं, क्या बात है आप सब लोगों की। और सुने हो आपके छोटे भाई नवीद ने आपको सलाम बोला है और अभी वो आपका शो सुन रहे हैं। अरे क्या बात है, उनके हाथ में जो मूछाई थी जरा आप मालूम तो करें, हाथ में मूछ आ गई थी, नकली लगाई हुई थी क्या मूछ नवीद भाई, जरा बताइएगा। अच्छा जी नदीम भाई, आई एम आस्किंग यू, साहबजादा साहब क्या इन्होंने कुछ पूछा था रैम्बो के बारे में पूछा था मेरा ख्याल है, मैं वो मैसेज दोबारा देख लूं। नदीम भाई सोरन ओरिजिनली किस कंट्री से है? अच्छा जनाब ये सोरन, यार ये तो बड़ा आसान सा सवाल है यार, ये बेसिकली भाई 1946 में न्यूयॉर्क अमेरिका में पैदा हुए थे। अब अमेरिका में पैदा हुए तो ज़ाहिर है अमेरिकन हुए, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। और इनके बारे में मैं क्या बताऊं यार, मेरा मतलब ये कि मोस्ट फेवरेट एक्टर स्टॉलन है और उन्होंने आइकॉनिक किस्म के बहुत सारे करेक्टर किए हैं, जिनमें सबसे पहले जो इनका आइकॉनिक करेक्टर था वो था रॉकी। रॉकी एक सीरीज थी और ये मूवी पहली जो आई थी बॉक्सिंग से रिलेटेड थी, एक बॉक्सर के ऊपर बनाई थी और इसके तकरीबन ऑलमोस्ट रॉकी 4-5 उसके बाद क्रीक और तकरीबन 7-8 इस मूवी के पार्ट्स बने हैं। और फिर इन्होंने एक और उसके बाद जो है इन्होंने एक पिक्चर बनाई थी फर्स्ट ब्लड जो थी वो उसके बाद उसके जो पार्ट्स बने, क्योंकि फर्स्ट ब्लड मूवी में इनका जो नाम था वो जॉन रैम्बो था, बस वो जॉन रैम्बो ऐसा मशहूर हुआ कि रैम्बो के नाम से फिर मूवीज आना शुरू हुई और उसके भी बहुत सारे पार्ट्स बने। और स्टॉलन फिर उसके बाद बेतहाशा इनकी मूवीज, ये तो वो करेक्टर्स जो दो मैंने इनको बताए कि जो कि बहुत ज्यादा चले। और अब बुढ़ापे में इनकी एक्सपेंडेबल जो है वो रिकॉर्ड कायम कर रही है, एक्सपेंडेबल के भी तकरीबन 3 पार्ट्स आ चुके हैं एंड आई थिंक कि उसके चौथे या पांचवा भी आने वाला है। लेकिन इससे दरमियान में इन्होंने बेतहाशा क्लिफ हैंगर इनकी मूवी और उसके जज रेड, मतलब इस बंदे की मैंने तकरीबन सारी फिल्में देखी हुई हैं, शायद ही कोई टेंगो एंड कैश और कोबरा, कौन कौन सी मूवी का नाम ले भाई स्टॉलन की। और ये बहुत बड़ा, ये समझ लीजिए कि अमेरिका का अमिताभ बच्चन, ये वो था। तो जनाब ये सिलसिला खार इसी तरह चलता रहेगा, आपके मैसेज की जानिब दोबारा बढ़ते हैं। अनीस कह रहे हैं कि भाई ये सिर्फ तारीफ नहीं बल्कि हकीकत है सर, ये आप फिर मैं कहूंगा उसने समाज। अनीस शहजादे जीते रहो, मुस्कुराते रहो, शाद रहो, आबाद रहो। बाबू परेशान हो रही हो थोड़े से, इस वजह से जहन काफी बातों में उलझा हुआ है इसीलिए। हाय कोई बात नहीं मेरी प्यारी सी बहन, जमा सरदार है इस वजह से लिख दिया गलती से, अल्लाह ताला तुम्हारी तमाम परेशानियों को दूर करे मेरी प्यारी सी बहन। शुक्र है आज कंजूस बहन ने के, ये सलीम मेमन का मैसेज है, इसके हिज्जे करने पड़ेंगे भाई, तुम्हारे मैसेज के हिज्जे करेंगे फिर पढ़ेंगे, यानी कि समझ रहे हैं ना। इस्लामाबाद से गरम गरम हवाओं के झोंकों के साथ, क्योंकि वहां पर गर्मी पड़ रही है ना, थोड़ा सा बदले भी भाई। हमारे प्यारे से जो है वो आ गए हैं, गुल तेरा रंग चुरा लाए गुलजारों से, यानी कि हमीद गुल साहब सलाम का है और तमाम सुनने वालों को भी सलाम का है। तारीख में सबसे पहले बहरी जहाज या किश्तियां बनाने का सहरा किसी एक मुल्क या जदीद रियासत के सर नहीं जाता बल्कि पुरानी तहजीबों को जाता है, बेशक जाता है। कदीम तरीन किश्तियां दुनिया की कदीम तरीन दरियाफ्त शुदा कश्ती, ओए होए होए पैसी कैनोई इसका नाम है, जो कि तकरीबन 8000 कबले मसीह पुरानी है और नेदरलैंड में ये कश्ती पाई जाती है।
اور بڑے بحری جہاز باقاعدہ بحری سفر اور لکڑی کے جہاز بنانے کی ابتدا سب سے پہلے قدیم مصریوں نے کی تھی. یہ تمام تفصیل آپ کو بتا رہا ہوں, سوال کا جواب نہیں بتاؤں گا آپ کو, انہوں نے لکھ کر دیے. موجودہ لبنان و شام کے لوگوں کی بھی اس میں کیا نام ہے کو کہتے ہیں ہاتھ ہے ان کا بھی. جو دریائے نیل اور بحر روم میں جہاز رانی کرتے تھے. اسلامی بحریہ اسلامی تاریخ میں سب سے پہلا بحری بیڑا اور بحری جہاز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں شام کے ساحل پر تیار کروایا گیا تھا. اچھا یہ تو انہوں نے اس حوالے سے بتا دیا, لیکن آپ کو حضرت نوح کی کشتی یاد نہیں ہے؟ یعنی کہ سمجھ رہے ہیں نا آپ, یہ گل صاحب آپ کے لیے. لیکن گل صاحب آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا. سوال یہ تھا کہ باپ سے چلنے والا پہلا بحری جہاز کس ملک نے بنایا تھا, یہ سوال ہے. ویسے آپ نے جو تاریخ بتائی ہے بالکل درست بتائی ہے, وہ اپنی جگہ پر قائم ہے. اس طرح تو ہوتا ہے, اس طرح کے کاموں میں کیوں اداس بیٹھتے ہو سردیوں کی شاموں میں. تو سونے ہوں ڈیڈیکیشن کی جانب بھی چلتے ہیں. میسیجز تو خیر آپ کے آ ہی رہے ہیں, لیکن یہاں تھوڑی سی مشک کے تھوڑے سے میسج پڑھ لیں آپ. یہ ہماری چھوٹی مشک جو ہے نا, یہ ناراض نہ ہو جائے. سنو اپنے بالوں کا خیال رکھنا, ابھی میں نے تمہارے بالوں کی نکی نکی پونیاں بنائی ہیں. یہ تو ہو گیا تھا. امین بھائی کا نام, امین بھائی نام میں کیا رکھا ہے, مشکی ہو یا مشک. اور ہینڈسم جانو برگر کھانا ہے, میں شاید پڑھ رہا تھا ہینڈسم جانو برگر کھانا ہے. جانو برگر کھانا ہے, بالکل کھا لیجیے جا کر. یہ پوچھنے کی کیا بات ہے. اچھا جناب گانے کی جانب چلتے ہیں, اور ڈیڈیکیشن ہے تو دیکھیں بھائی. ہاں عامر کو ڈیڈیکیٹ کرنا ہے بھائی ہم نے گانا, تو عامر کو ہم گانا کریں گے ڈیڈیکیٹ. کون سا؟ یہ والا. صحیح ہے بھائی. تو عامر بھائی گلشن اقبال والے میرے پیارے سے دوست, آپ کو ایک ٹریک ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے آصف بھائی ملا نہاری والے, اس کے بعد جانو برگر, ان سب کو ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں بھائی. یہ لو پکڑو. Bohemia.

वेलकम बैक कहेंगे सुने हो आप सबको। मैसेजेस कर रहे हैं आपके एशिया स्पेस, आपका नाम आपका मैसेज उसको सेंड कर रहे हैं 3636 और जाते हैं आपके मैसेजेस की जाने में और कह रही है मुश्क के भूख लग रही है सच्ची में। अरे जीती तो मुश्क यकीन मानो अगर ये बस में होता तो मैं वैसे तस्वीर भेज देता हूँ आप, ये समझ लीजिए कि मैंने आपको बर्गर खिला दिया, आपका पेट भर गया है, यानी कि समझ आई ना। अच्छा जी जनाब हाँ अब ये सलीम मेमन का मैसेज अब समझ में आया और कह रहे हैं कि शुक्र है कि आज कंजूस बहन यानी के संजीदा जी को मुझ जैसे शरीफ और मासूम का ख्याल आया। सलीम मेमन कह रहे हैं भाई उनको सबका ख्याल है, कैसी बातें कर रहे हो भाई, हमें भी तुम्हारा ख्याल है, बहुत ज्यादा ख्याल है। अच्छा भाई चार्ली यानी कि अमीन भाई कह रहे हैं मेरी डेडिकेशन पूरी कर दे प्लीज भैया। सलीम जावेद का सॉन्ग, एक तो तुम्हारे हर मैसेज के बाद यार जो गाने बदलते रहते हैं और आपकी तलाए अर्ज है कि अभी मैंने आपके नाम से क्योंकि आपने आतिफ असलम के गाने का कहा था तो मैं वो तू जाने ना शायद आपको याद हो तो वो इंडियन गाना है वो हमने चलाया नहीं, हमने आतिफ असलम का नया ट्रैक चला दिया बिल्कुल नवा नकोर जिंदगी साथ है शो A1 कोई रिक्वेस्ट नहीं है भाई, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। भाई वाह ये क्या बात हुई, लेकिन हम फिर भी करेंगे डेडिकेट, यानी कि समझ रही हैं आप। अच्छा जी हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं सवाल, कुछ भी पूछ सकते हैं आपको भाई है ना मेरे सबा गुल कह रही। मैंने कब कोई सवाल करना है मेरी बहन, मैंने कब सवाल का कहा, किसका कर दिया आपने मैसेज मेरे को। ओरिजिनली स्टॉलन जो है वो इटालियन है साहबजादा, साहबजादा मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करूंगा। स्टॉलन आपको पता है कि कब पैदा हुए थे, 1946 में वो पैदा हुए थे न्यूयॉर्क में और उनके वालिद मोहतरम जो थे वो उनका नाम था फ्रैंक स्टॉलन और वो हेयर ड्रेसर थे। उनकी अम्मी जी जो थी ना वो उनके हवाले से आप कह सकते हैं कि वो इटालियन थी और उन वो भी जो है वो प्रोफेशनल जो है रेसलर प्रमोटर जो थे जैकी स्टॉलन, मतलब ये बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है लेकिन अमेरिकन भाई जो पाकिस्तानी है अमेरिका में पैदा होता है वो, मतलब उनके बच्चा पैदा अमेरिका में फॉरन अमेरिकन पासपोर्ट मिल जाता है तो वो अमेरिकन कहलाता है चाहे वो उर्दू बोलता हो, तो इसी तरह स्टॉलन भी है। खैर जी हो सकता है कि आप सही हो सकता है मैं सही हूं, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। सुने हो आपको कश्ती में डर तो नहीं लगता, इनाम भाई का मनोड़ा का एड्रेस मैं दे दूं। सलीम मेमन कह रहे हैं यार आप मुझे उनका एड्रेस नहीं दीजिएगा, मुझे लेकर जाइएगा, मुझे की पता किसे दे, यानी कि समझ रहे ना। वैसे देखेंगे वक्त मिला तो जरूर जाऊंगा। संजू कहती हैं प्यारी शहजादी हलीमा को शहजादे का यौम पैदाइश बहुत मुबारक हो।

वेलकम बैक कहेंगे भाई, है ना, है ना, है ना। और हमें यकीन है कि अहमद को भी समझ में आ रहा होगा किसके, क्योंकि उसको बलोची, पश्त, उर्दू सब समझ में आता है। लेकिन हम अहमद को जो है वो उर्दू गाना भी डेडिकेट करेंगे, यानी कि समझ रहे ना। अच्छा भाई, डेडिकेशन के लिए चंद लोग रह गए और उनकी डेडिकेशन भी हम जरूर करेंगे, और दो को तो हम खुद डेडिकेट करेंगे। एक जिंदगी है, क्योंकि जिन उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, और रूहे मन है, और बाकी उसके अलावा हमारे सलीम मेहमान भाई हैं, नवीद भाई हैं, और संजू भी रहती हैं अभी, हैं जी। डोंट वरी अदिला, डोंट वरी, अहमद गाना जरूर डेडिकेट करेगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं आपके मैसेजेस की जानेब। और हलीमा मेरी प्यारी सी बहन कह रही हैं थैंक यू संजीदा बहन। समी कह रहे हैं थैंक यू नदीम भाई, फौरन मान भी जाता है ये। लिफाफे में अगर तुम्हारे पैसे कम आए तो तुम्हारा क्या मूड होगा, पहले ये बताओ। मैं और गुफरान आएंगे, अगर हमने 200-200 रुपए मिलाकर या 250-250 रुपए मिला के 500 रुपए दिए तो तुम तो इसी तरह नाराज हो जाओगे, नाराज हसीना की तरह। और जनाब सवाल एक बार फिर रिपीट करते हैं और ये भी बता देते हैं जनाब, मेरा नाम है नदीम अख्तर, प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एन ए सोने। म्यूजिक ट्विस्टर में मैं हूं आपके साथ, आपका और मेरा साथ है जनाब 1 बजे तक, और ये अल्लाह गुल्ला जारी हो सारी है। यकीन मानिए टाइम का नहीं पता चल रहा, प्रर करके उड़ रहा है। और सवाल मैंने आपसे पूछा है कि भाप से चलने वाला पहला बहरी जहाज किस मुल्क ने चलाया था, और वैसे ये हल्ला गुल्ला जारी और सारी रहेगा, मगर थोड़ा सा तहम्मुल मिजाजी वाला शोभी भाई आएंगे, अभी शोभी भाई आए हुए हैं तो मैं वैसे माहौल बना दूंगा, शोभी भाई सुन रहे हो तो। अगर शोभी भाई अभी बस अगले जो गाने चलेंगे ना एक के अलावा, वो बड़े मेलो से बेहतरीन किस्म के ट्रैक चलाऊंगा ताकि शोभी भाई का भी मूड अच्छा हो जाए। साहबजादा साहब कह रहे हैं उसने मुझसे प्यार किया, गुरुमंदर चौरंगी पर बेवफा कैद की, जूलियन पर झूलों पर लिखा होगा, मैं कायदे आजम के मजार के झूलों पर जाकर बदल गई। साहबजादा क्या लिखना चाह रहे हो, गुरुमंदर चौरंगी पर प्यार किया और बेवफा भी हो गई। खैर जी, इस तरह तो होता है इस तरह। साहबजादा तरह क्या कहना चाह रहे थे यार, प्लीज बताओ, सर से गुजर गया तुम्हारा ये जुमला। अभी एक ट्रैक की जानिब, एक और डेडिकेशन की जानिब जाएंगे हम, और इस डेडिकेशन के बाद फिर हम आपको सवाल का जवाब भी देंगे, और फिर बाकी जिन जिन का मैंने कहा है कि डेडिकेशन है वो बाकी भी पूरी करेंगे। तो फिलहाल जनाब ये हमारे सलीम मेमन और उसके साथ साथ हमारे नवीद भाई, छोटे भाई जो हैं वो, और उसके साथ साथ साहबजादा हमारा शहजादा जो है, इसका भी मैसेज आया है, इसको भी डेडिकेट करेंगे ये ट्रैक। उसके साथ साथ हम ये ट्रैक डेडिकेट करेंगे, कहां कहां गया, कहां गया भाई नाम, इनामुल हक भाई जो है हमारे प्यारे से, हम उनको भी ये ट्रैक डेडिकेट करेंगे। हमारे यूसुफ भाई पापोश से सुन रहे हैं, उनको भी हम ये ट्रैक डेडिकेट करेंगे। और अनीस हमारा शहजादा, उसने आज बड़ी तारीफें की है मेरे प्यारे से भाई ने, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सबके लिए एक बहुत ही प्यारा सा गाना है यार, ये लो पकड़ो।

वेलकम बैक कहेंगे मजबूर शहरयार रेहान का गाना बड़ा जबरदस्त गाना और उम्मीद करता हूँ कि आपको आया होएगा पसंद और अयो बापरे दिल लगी यारा जानी जगर गया अभी भी मैं मेहमानों के साथ मसरूफ हूँ सबा गुल को मुश को मानूर को हिना को और तमाम सुनने वालों को उन्होंने सलाम कहा है वालेकुम असलाम लाला वैसे आपकी जानिब से सलाम हो चुका है हमने आपकी जानिब से हमें पता है कि आप मसरूफ थे और लाला ने कहा है कि इन चारों को मेरी जानिब से एक ट्रैक डेडिकेट कर दो नदीम भाई क्योंकि आप ट्रैक डेडिकेट करेंगे तो ये ट्रैक उनको बहुत अच्छा लगेगा जीबीएन को तो अगर आप ये कह रहे हैं तो एलो पढ़ो

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो आप सबको। संजू का मैसेज आया, कह रही है लाला को सलाम कह दें। जनाब आपका सलाम पहुंच गया। अच्छा भाई, हमारे साहबजादा ने बिल्कुल सही कहा, वो मैं ग्रिल्स के हवाले से उन्होंने कहा था, तो उसके बाद मुझे जब इन्होंने इस हवाले से थोड़ी सी तफसील लिखी है कायद आजम के मजार वाली, तो मैसेज पूरा समझ में आया। उनका मैसेज पढ़ूंगा भाई मैं। कह रहे हैं उसने मुझसे प्यार किया गुरु मंदिर चौरंगी पर, बेवफा कायद की जालियों पर जाकर बदल गई। इसको कहते हैं हाँ, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। गुड यार, गुड जोक। अच्छा समी क्या कहते हैं, लिफाफा नहीं चाहिए, आप बस आ जाना। ये तो बात गलत है भाई, लिफाफा तो हम लाएंगे, चाहे खाली लाएंगे भाई। आप गुफरान भाई आओ, वही मेरे लिए गिफ्ट होगा। नदी में पक्की बात है, सोच लो वैसे। लिफाफा लाएंगे हम भाई, चाहे खाली लाए, हम लाएंगे जरूर। अच्छा भाई, अच्छा बहुत शुक्रिया हमारे प्यारे से हमीद गुल साहब, उन्होंने कल के लिए मुझे सवाल भेज दिया। अयूब लाला कह रहे हैं जिगर वाह गुड सॉन्ग, बहुत अच्छा लगा जिगर, खुश रहे भाई। आपको तो ये अच्छा लगना ही है। वैसे इत्तफाक से ऐसा हुआ है कि महानूर जो ने उसने गलती से ये गाना लिख दिया था, मैंने गाना दूसरा आपकी जानिब से, उनकी जानिब से आपको जो डेडिकेट हुआ था पख्तों का गाना है एक, वो ये वाला था। आप देर से आए हो तो इसलिए बातों के साथ साथ आपको थोड़ा सा सुना था, ये दो दफा पहले भी चल चुका, बहुत अच्छा लगे थे।

ये वाला गाना था लाला। अच्छा जनाब, और उन्होंने हमारे हमीद गुल साहब ने एक सवाल भेजा है, वो हम आपसे कल करेंगे भाई। गुल साहब ने इस्लामाबाद से इतनी मुश्किल से सवाल भेजा है। अच्छा जी, लाला को खसूसी सलाम और ढेरों दुआएं, ये कह रही है हमारी नौरीन तौसीफ बहन, और मानूर कह रही है वेलकम टू द शो लाला दास खान। अच्छा, आपकी अपनी एक रौनक है जो कि लग चुकी है। एनीवे जनाब, बढ़ते हैं अपने सवाल और उसके जवाब की जानिब। सवाल मैंने आपसे ये किया था कि भाई आपने ये बताना है कि वो कौन सा मुल्क है जिसने बाप से चलने वाला पहला कामयाब बहरी जहाज बनाया था। तो इसका जवाब है जनाब, अमेरिका ने बनाया था और 1807 में बनाया था अमेरिका ने। हैं जी, ते हैं जी। और मेरे ज्यादातर लिसनर्स ने नाम भी लिख दिया भाईजन, रॉबर्ट, रॉबर्ट जो है ना, रॉबर्ट, रॉबर्ट फिल्टन, उसका नाम है रॉबर्ट फिल्टन, जिसने ये इजाद किया था भाप से चलने वाला जहाज। तो मैंने बोला सवाल का जवाब भी दे दें। अब जरा मूड जो है ना आप लोगों का ट्विस्ट करता है अब, क्योंकि हमारे प्यारे से शो भी भाई अभी शो करेंगे, तो हम अब जो हल्ले गुल्ले वाले गाने चला रहे थे, तो अब थोड़ा सा मैलो से ट्रैक्स की जानिब चलते हैं। और मैलो का ट्रैक सा तो जिंदगी साथ है और रूहे मन भी साथ है, तो आप दोनों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त सा ट्रैक है, मैलो सा ट्रैक है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। एलो फड़ो।

वेलकम बैक कहेंगे सुने। अचानक बीच में से गाना हो गया गायब, पता नहीं क्यों की हो यानू। और जना भाई जान हमारी तरफ से लाला को नसवार वाला सलाम बोलते सलीम मेमन कह रहे हैं। और लाला कह रहे हैं वाह जी इस तरगी में तोरे तोरे लाजवाब सॉन्ग था। लाला देखें आपको डेडिकेट हुआ था हैं जी ते हैं जी। और मानूर कह रही है जमा सरदार किन के लिए थैंक यू लाला एंड बाब ओके बाब। और हमारे मेमन साहब सलीम मेमन साहब के एक और मैसेज आया सुनियो आपके छोटे भाई नवीद ने आपको सलाम बोला है और अभी वो आपका शो सुन रहे हैं कि हाथ में जो मूछ आई थी जरा आप मालूम तो करें कहीं बेगम ने बेलन से पिटाई तो नहीं की। सलीम मेमन पूछ रहे तो भाई हमारे नवीद साहब ये आप देख रहे हैं आपसे कैसा कैसा मजाक कर रहे हैं मुझे पता है मजाक कर रहे हैं आपसे लेकिन अगर ऐसा हो गया है तो दो इसकी बेलन वजह नहीं हो सकती। अगर ये खुद शेव बनाते हैं तो अचानक पीछे से आवाज आई होगी नवीद तो बस वो मूछ उस वक्त काट रहे होंगे सेट कर रहे होंगे तो बस हाथ से जो है यानी कि वो डर के मारे खुद ही मूछ हट गई ऐसा हो सकता है। बात ऐसे बनाई जाती है यानी कि समझ रहे हैं ना आप इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तो सोने हो एक क्योंकि बिल्कुल लास्ट यू कैन से के लिंक चल रहा है। अच्छा जी हाय नाइस सॉन्ग आपके शो में मेरी पहली फरमाइश इस सॉन्ग की थी और आपने प्ले भी किया था कह रही रहा था सो स्वीट। मेरी प्यारी सी बहन हलीमा मुझे याद नहीं है मगर बिल्कुल किया होगा ये बड़ा जबरदस्त सा गाना है बस ये मुझे अफसोस ये हुआ कि बीच में ये गाना कट गया दैट्स वेरी बैड लेकिन हम फिर चलाएंगे यानी कि समझ रही है ना आप। तो जनाब अब आखिरी नोट पर क्योंकि सवाल का जवाब भी मैं आपको दे चुका हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्यारी बात जो कि शो के आगाज में ही हमारी प्यारी सी बहन नौरीन तौसीफ ने फैसलाबाद से भेजी थी जो कि मैंने मजाक में आगे पीछे कर दी मगर इसमें जो मिसाल दी गई है वो बड़ी खूबसूरत और सबक आमोश किस्म की मिसाल है कि जब हमारी तबीयत खराब होती है या हम कोई बासी खाना खा लेते हैं या किसी ऐसी होटल में जाकर हम कोई ऐसा खाना खा लें कि जिसमें कोई जरासीम वगैरह होते हैं तो वो खा तो लेते हैं हम लेकिन हमारी तबीयत बिगड़ने लगती है और हमारा जो मैदा है वो उसको कबूल नहीं करता और वो हमें वॉमिट हो जाती है उल्टी आ जाती है और वो सारा खाना वो बाहर फेंक देता है वो गलीज खाना जो है वो हमारे मेदे में नहीं रहने देता और बाहर फेंक देता है। तो इससे उन्होंने हमारे इस मेदे से एक एग्जाम्पल दी कि काश हमारा जहन जो है हमारा जो दिमाग है हमारी जो सोच है ये भी ऐसी ही हो जाती कि अगर कोई इसमें जो है वो गंद डालता ऐसी चीज जिससे दिमाग खराब हो जाए। खराब होने से मुराद ये नहीं कि पागल हो जाए खराब होने से मुराद ये कि बदगुमानियां कोई इसमें डाल रहा हो किसी की बुराइयां इसमें डाल रहा हो तो वो काश ऐसा हो कि ये भी मैदे की तरह दिमाग जो है वो उसको मेमोरी जो है उसको डिलीट कर दे तो ये एक बड़ी जबरदस्ती बात है। मगर अलमिया सबसे बड़ा हमारी जिंदगियों में ये आ गया है कि हम बिल्कुल इसके उलट चल रहे हैं। हमें वो शख्स जो है वो ज्यादा प्यारा लगने लगता है जो हमारे मतलब की बात कर रहा हो और हमारे दुश्मनों की बात कर रहा हो। दुश्मनों से मुराद ये है कि जिनको हम पसंद नहीं करते जिनसे हम जलते हैं जिनसे हमें हसद है ये तो मैं खुद से कह रहा हूं ना क्योंकि जो लोग ऐसा सोचते हैं वो ये नहीं समझते कि उनको हसद है या वो जल रहे हैं या वो कुड़ रहे हैं या बदगुमान है बस उनको सिर्फ और सिर्फ सामने वाले इंसान में बुराई नजर आ रही होती है और वो जो इंसान है वो कोई गैर नहीं होता अपना ही होता है चाहे वो खून का रिश्ता हो चाहे वो दोस्ती का रिश्ता हो चाहे वो किसी भी तरह की आपके साथ एफिलेटेड हो तो हमारे जहन में बदगुमानियां जो हैं वो पैदा की जाती हैं और वो जहन एक्सेप्ट भी कर लेता है। इसको खत्म करने का एक मेरी नजर में तरीका होता है और वो ये है कि हमेशा याद रखिए आपकी जिंदगी में ऐसे बेतहाशा लोग होंगे कि जो आपको बताते होंगे यार तुम्हारे भाई ने ऐसा कर दिया
या तुम्हारे अब्बू ने ये कह दिया, ये तुम्हारे चचा ने ये कह दिया, तुम्हारी ताया ने ये कह दिया, तुम्हारे दोस्त, आपके दोस्त ऐसे होंगे जो आपको इस तरीके से भी बदगुमान कर रहे होंगे कि मतलब आपको गुमराह कर रहे होंगे कि कहीं जॉब अपॉर्चुनिटी है, ठीक है ना, तो आप दोनों ने वहां जाना है, वो वहां से होकर आ जाएगा और आपको आपको साथ भी नहीं लेकर जाएगा, ठीक है ना। तो तीसरा जो होगा वो आपको बदगुमान करेगा उससे कि देख तुझे छोड़ के चला गया वो, मेरी बात को समझ, ये तेरा मुखलिस है नहीं, ये चक्कर में था कि इसको ये नौकरी मिल जाए। पता ये चला कि उसकी कोई मजबूरी थी जिसकी बिना पर वो चला गया। मिसाल के तौर पर उसको कोई लिफ्ट मिल गई और उसके जेब में पैसे नहीं थे, वो लिफ्ट के थ्रू वहां पर इंटरव्यू देने चला गया, आपके बगैर चला गया। तो खैर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिंदगी में। तो इसका मेरी नजर में, मेरा अपनी जिंदगी की अगर मैं मिसाल दूं आपको, तो जाती तजर्बा ये है कि अगर आप हक पर हैं और सच पर हैं, ठीक है ना, कोई शख्स किसी भी तौर पर आपको आके किसी की बुराई करता है कि मैं आपको बता रहा हूं ये शख्स जो है ना इसने ये काम किया हुआ या वो काम किया हुआ, जो कि आपका दोस्त है या आपका भाई है या आपका रिश्तेदार है, तो आप फौरन उसके मुंह पर चले जाएं। आप बोले ठीक है तुमने कह दिया, मैं उससे जरूर पूछूंगा ये बात और तुम गवाह रहना। अगर वो बोले ना भाई मेरा नाम नहीं आना चाहिए बीच में, तुमने जो बात करनी है उसे खुद करो, तो इसका मतलब है वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि जो सच बोलता है वो सामना करने की जुर्रत भी कर सकता है। तो लिहाजा हमेशा सुने ना, हमारी सबसे बड़ी गलती ये कि हम सुन लेते हैं और सुनने के बाद यकीन भी कर लेते हैं और यकीन करने के बाद उसमें चार मसाले भी लगा देते हैं। तो ये बदगुमानियों को खत्म करने का तरीका यही है कि सामने वाले को बोलो मैं उससे जाकर बात करूंगा, भाई उसने मेरे बारे में ऐसी बात कर कैसे दी किसी से या तुमसे, तो वो फौरन अगर पीछे हटेगा तो इसका मतलब है कोई ना कोई दाल में काला है। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। मैं चाहूंगा आप लोगों से इजाजत, इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे कल। और जाते जाते एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक आप सबकी समातों की नजर, और ये ट्रैक जनाब हमारे अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब की जानिब से और इरफान मेमन की जानिब से, मेमन फैमिलीज की जानिब से, सारा मेमन की जानिब से आप सबको डेडिकेट करते हैं। अल्लाह हाफिज़।

Время.

और अब आपको पता है कि ये मेहंदी की पूरी टीम जो पहुंच चुकी है बिल्लो के घर और वहां पर अब ये मेहंदी लगाई जा रही है जनाब, ये रस्म शुरू हो चुकी है और

और जनाब ये तो पूरा मूड एक बन गया, हम आज कुछ अच्छे मूड के साथ प्रोग्राम हो गया, प्रोग्राम का एक मूड बन गया शादी ब्याह और एक मूड का, तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आप तमाम इस सुनने वालों का, तमाम दोस्तों का, तमाम फैमिली मेंबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब ने इतना वक्त निकाला मेरे लिए। इंशाल्लाह जिंदगी रही, अल्लाह ताला ने मोहलत जिंदगी, तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी रात 1 बजे इसी जगह इसी चैनल पर, आपकी मोहब्बतों और आपकी दुआओं के साथ। और ये मेरा पसंद का गाना जी, मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना मैं आपके नाम करता जा रहा हूँ, अपने तमाम ही सुनने वालों को डेडिकेट करता हूँ मैं, और इजाजत चाहूंगा अमेरिका के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।

FM

0: क्या कह रही थी तुम? एक बार फिर बोलो।
1: नहीं रह सकती ना मैं तुम्हारे बगैर। एक दिन, एक घंटा, एक मिनट भी नहीं।

وأنزل من السماء ماء فأخرج به